दोस्तों, 107 FM रेनबो पर आपकी दोस्त सविता करती है सभी का इस्तकबाल प्यार भरे नमस्कार के साथ नॉन स्टॉप गपशप पर। जी हाँ, आपसे वादा किया था कि 22 तारीख को मैं आने वाली हूँ और आ गई लेकर कार्यक्रम नॉन स्टॉप गपशप। तो पूरे एक घंटा हम करेंगे गपशप। मौसम का तकाजा है कि हम आपसे बात करें बिना रुके। और क्या बातें करें, बातें तो करेंगे ढेर सारी, लेकिन फिलहाल तो मेरा दिल चाह रहा है कि एक गीत आपको सुनाऊं।

दोस्तों कहते हैं कि आने वालों से दुनिया आबाद हो जाती है। बिल्कुल दोस्तों, जब हम अपने स्टूडियो में आते हैं और आपके साथ मुखातिब होते हैं तो हमारी दुनिया तो आबाद हो जाती है और हमें एक ऐसी खुशी मिल जाती है जो सारा दिन हमारे दिल को खुश रखती है। तो दोस्तों

0: मेरी खुशियाँ तो मेरे साथ हैं और वो आपकी खुशियाँ आपके साथ कैसे मिलती हैं, कैसे होती हैं, ये तो आप ही जाने। लेकिन हम इतना तो जानते हैं कि जब आप गाने सुनते हैं और हमसे बातें करते हैं तो भी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी खुशियाँ मिली जाती होंगी, और इन छोटी छोटी खुशियों को देख कर कहीं हमको भी खुशियाँ ही मिलती हैं। दोस्तों सेगमेंट चलिए आज के दिन की ओर चलते हैं।
1: आज के दिन
0: जी हाँ, गौरवपूर्ण गाथाओं के खजाने शायद संसार के हर देश के इतिहास में छुपे हुए हैं, ये बात हम भी जानते हैं, आप भी। बिल्कुल दोस्तों, उन्हीं कहानियों से गुजरती हैं नस्लें और लिख देती हैं एक इतिहास, और वही इतिहास में बन जाते हैं ऐतिहासिक तथ्य। तो ऐसे ही तथ्यों को चुनकर लाई हूँ मैं आज के दिन, यानी 22 जुलाई का दिन ऐतिहासिक घटनाओं से भरा पड़ा है, जिनमें से कुछ घटनाएं हम आपके लिए लेकर आए हैं जिन्होंने विश्व इतिहास के विभिन्न पहलुओं को आकार दिया है। सन 1099 में प्रथम धर्म युद्ध के दौरान इसी दिन गॉडफ्रे ऑफ बोइनल को यरूशलम साम्राज्य के पवित्र समाधि के पहले रक्षक के रूप में चुना गया था, जो धार्मिक और सैन्य इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। सन 1298 में फालकिर्क की लड़ाई में एडवर्ड प्रथम के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने विलियम वॉलेस के नेतृत्व में स्कॉटिश सेना को हराया, जो स्कॉटिश स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण घटना थी। सन 1796 में जनरल मोसेस क्लीवलैंड द्वारा ओहियो के क्लीवलैंड शहर की स्थापना की गई, जिसने एक प्रमुख अमेरिकी शहर के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। इसके अतिरिक्त 22 जुलाई को 1812 में सलामांका की लड़ाई के लिए भी जाना जाता है, जहां ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने फ्रांसीसी सेना को हराया था, जिसने नेपोलियन युद्धों के दौरान प्रायद्वीपीय युद्ध को प्रभावित किया था। तो दोस्तों ये थे आज के ऐतिहासिक तथ्य और आज के कुछ खास दिन मनाए जाते हैं। जी हाँ, फिलहाल तो आपको जो दिन मैं बताने वाली हूँ आपके मुंह में पानी आने वाला है। बिल्कुल दोस्तों, राष्ट्रीय आम दिवस, ये दिन उष्ण कटिबंधीय फल आम की सराहना करने का दिन है, जिसका पूरे देश में व्यापक रूप से आनंद लिया जाता है, और आप भी इन दिनों आम का आनंद ले रहे होंगे, तरह तरह की किस्मों का स्वाद चख रहे होंगे। आप में से कुछ ने मैंगो सिरप बना लिया होगा, कुछ ने आम पापड़ बना लिया होगा, और आम के विभिन्न जो स्वादिष्ट व्यंजन है उनका भी आपने भरपूर स्वाद ले ही लिया होगा। दोस्तों इसके अलावा आज है राष्ट्रीय जलपान दिवस, जुलाई के चौथे गुरुवार को मनाया जाता है यह दिवस, गर्मी के महीनों के दौरान आराम करने और ठंडे पेय का आनंद लेने का दिन है। इसके अलावा यह दिन एक राष्ट्र की औपनिवेशिक शासन से संप्रभु राज्य बनने तक की यात्रा की एक मार्मिक याद दिलाता है, किरीबाती स्वतंत्रता दिवस। इसके अलावा और भी खास दिन है, और आज के दिन खास व्यक्तियों का जन्म भी हुआ, वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन पहले तो मेरा दिल धड़क रहा है बड़ी जोर जोर से ये गीत सुनने के लिए।

जिया दोस्तों, जिया धड़क धड़क जाए। बिल्कुल मौसम ऐसा हो रहा है कि जिया धड़कने का ही समय है और ये मौसम का तकाजा भी है। दोस्तों, विनायक राव पटवर्धन का जन्म हुआ था आज ही के दिन। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक प्रसिद्ध गायक वे पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के शिष्यों में गिने जाने वाले हैं और अपने समय के महान गायकों में से एक थे। 1932 के पुणे में गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना करके उन्होंने आजीवन संगीत सेवा की। उन्होंने कई पाठ्य पुस्तकें भी लिखीं, राग विज्ञान प्रमुख हैं जिसमें। 1972 में भारत सरकार द्वारा विनायक राव पटवर्धन को पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। उनका जन्म 22 जुलाई 1998 को महाराष्ट्र के मिराज में हुआ। दोस्तों, आज ही के दिन एक और खास पार्श्व गायक का जन्म हुआ। बता दूं, जी हाँ, आपके हमारे सबके प्रिय गायक अरमान मल्लिक का भी आज ही के दिन जन्म हुआ है। दोस्तों, एक भारतीय गायक, गीतकार, रिकॉर्ड निर्माता, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, परफॉर्मर और अभिनेता अरमान मल्लिक हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, तेलुगू, कन्नड़, मराठी, तमिल, गुजराती, पंजाबी, उर्दू, मलयालम सहित कई भाषाओं में इन्होंने गाने गाए हैं। उन्हें रोमांस का राजकुमार भी कहा जाता है। उन्होंने कई पुरस्कार भी जीते हैं जिसमें ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड्स और 2015 में बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार भी शामिल है।

अरमान मलिक को। इसके अलावा अरमान मलिक की दोस्तों और भी बहुत सी उपलब्धियां हैं, जिसमें अरमान मलिक, यूं तो अरमान मलिक सरदार मलिक के पोते हैं, मशहूर संगीतकार सरदार मलिक के पोते हैं और अनु मलिक के भतीजे हैं, और उनके पिता भी मशहूर संगीतकार डब्बू मलिक हैं। लेकिन अरमान मलिक ने अपनी छोटी सी ही उम्र में बहुत कुछ हासिल कर लिया है। उन्होंने अपनी शुरुआत सारे गामा पा लिटिल चैम्प्स का पहली एडिशन आया था उसमें उन्होंने भाग लिया, तब उनकी उम्र महज 9 साल थी और वो टॉप 7 तक पहुँचे थे। इसके अलावा उन्होंने 100 से 200 कमर्शियल एड में अपनी आवाज़ दी है। लंदन के विम्सले थिएटर में लाइव परफॉर्मेंस करने वाले सबसे कम उम्र के बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर के रूप में भी जाने जाते हैं अरमान मलिक। तो अरमान मलिक की जब बात हुई है तो मीट ब्रदर्स और तुलसी कुमार के साथ अरमान मलिक को सुनते हैं।

0: दोस्तों अरमान मल्ले को हमारी ओर से, आकाशवाणी की ओर से और अपने सभी दोस्तों की ओर से ढेर सारी जन्मदिन की बधाई देते हुए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। और हाँ, मैं जानती हूँ कि आप सभी फ़ोन लाइन से लगे बैठे हैं मेरे साथ फ़ोन पर बात करने के लिए, लेकिन सोच रहे हैं कि हम आज किस पर बात करने वाले हैं। तो आज बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी बात है। जी हाँ, आपके शहर में बारिशों का मौसम है और बारिश हो रही है, और लेकिन आप हैं कि सुबह से ही कुछ प्लान करके बैठे हुए हैं कि आज ऑफिस जाते समय या फिर ऑफिस से लौटते वक्त या फिर स्कूल कॉलेज से जाते समय या इन द मीन टाइम हम आज ये काम करने वाले हैं। बहुत सारे प्लानिंग्स होती है, बहुत सारी प्लॉटिंग होती है, लेकिन ये कम वक्त जो बारिश है ना, वो सब चीज़ों पर फेर देती है। पानी, बिल्कुल ऑफ कोर्स, कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं भी जाने के लिए बैठे हैं और ढेर सारी बारिश हो गई, मूसलाधार बारिश हो गई, और ऐसे में आप घर से बाहर कदम ही नहीं निकाल पाए। तो फिर क्या, तो फिर यही बस इतना ही बताना है कि जब आपकी सब प्लानिंग प्लॉटिंग फेल हो जाती है और ऊपर वाले की चलती है, तब ऐसे में आप घर के भीतर या फिर कहीं वर्क प्लेस पर अटक गए हैं वहाँ पर, या रास्ते में आप कहीं पर हैं, तो फिर उस वक्त को कैसे बिताते हैं। कई बार जी हाँ, घर में तो हम रुकते हैं तो बहुत सारी अपनी मन की चीज़ें कर लेते हैं कि ठीक है भाई, चलो आज हम घर में हैं तो ये काम करते हैं, या फिर इसको ऐसे एन्जॉय करते हैं। तो आप कैसे उसको एन्जॉय करते हैं या फिर कैसे आप उसको यूटिलाइज़ करते हैं कहना चाहिए, तो मुझे बस इतनी सी ही बात आपको बतानी है। तो कुछ इंटरेस्टिंग बातें करनी है। मैं आपके फ़ोन कॉल्स का कर रही हूँ इंतज़ार, और फिलहाल आपको लेकर चलती हूँ कोलकाता कल्चर के सेगमेंट की ओर।
1: कोलकाता कल्चर,
0: कोलकाता कल्चर में आज हम आगे बढ़ेंगे और साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियां जो आपके शहर यानी कोलकाता में हो रही हैं वो हैं आशा की यादें। सांगीतिक कार्यक्रम में मशहूर गायिका आशा भोसले के सदाबहार गीतों को समर्पित एक भव्य सांगीतिक संध्या का आयोजन हो रहा है, जिसमें सुदेश भोसले और साधना सरगम अपनी आवाज़ का जादू बिखेरेंगे GD बिरला सभागार बालीगंज कोलकाता में 7 बजे। और ऋत्विक नाटक का मंचन हो रहा है। फिल्मकार ऋत्विक घटक के जीवन और संघर्षों पर आधारित यह बहुभाषी हिंदी नाटक उनकी कलात्मक यात्रा, विभाजन त्रयी जैसे फिल्मों से प्रेरित दृश्यों को मंच पर जीवित करेगा। एकेडमिक ऑफ फाइन आर्ट्स, कैथेड्रल रोड, कोलकाता, 6:30 बजे। इसके अलावा बनारस इज़ कमिंग टू कोलकाता सांस्कृतिक उत्सव है। बनारस की प्रसिद्ध गंगा आरती और वहाँ की संस्कृति की झलक कोलकाता में देखने को मिलेगी। सांस्कृतिक आयोजन में दीपदान और बनारसी संगीत की झलक भी इसमें शामिल है। तो ये है कोलकाता कल्चर।
1: कोलकाता कल्चर,
0: तो फिलहाल आपके लिए गीत लेकर आ रही हूँ, लेकिन गीत सुनाने से पहले एक बार और बता देती हूँ कि ये मौसम का तकाजा है। बिल्कुल, कि मौसम कई बार आपसे ऐसे तकाजे कर देता है जो कि आपकी प्लानिंग में शामिल नहीं होते, और आपको अचानक से भारी बारिश के कारण घर पर ही ठहर जाना पड़ता है, और तब उस ठहरे हुए वक्त में आप क्या करते हैं, कैसे उसे एंजॉय करते हैं।

फिर कैसे उसको यूटिलाइज़ करते हैं, क्या काम करते हैं, या फिर आपके मन में तब क्या विचार चल रहे होते हैं, आपको गुस्सा आ रहा होता है या फिर अच्छा लग रहा होता है, या फिर काम ना करने की खुशी हो रही होती है, या फिर काम ना पूरा होने का मलाल रहता है। कुछ ऐसी ही बातें मेरे साथ आपको ताज़ा करनी है और शामिल करनी है, साझा करनी है। मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपका।

0: बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।
1: जी हाँ दोस्तों, 107 एफएम रेनबो पर एक बार फिर से स्वागत करती है आपकी दोस्त सविता। और आइए चलते हैं अगले सेगमेंट एक चुटकी नुस्खे की ओर।
2: एक चुटकी नुस्खे,
1: एक चुटकी नुस्खे। जी मॉनसून का समय है और बारिश की टिप टिप, ऐसे में बालों का गीला होना लाजमी है। ऐसे में उलझन होती होगी कि बाल वर्क प्लेस पर जा रहे हैं और गीले हो गए। दोस्तों भी आप भी सोचते होंगे कि ये जो हेयर स्टाइल बनाया था, लेकर चले थे एक सुंदर सा हेयर स्टाइल बनाकर, लेकिन चलते चलते बारिश ने वो सब खराब कर दिया। ऐसे में हमारे सामने मानसून के दौरान बालों से जुड़ी समस्याओं को समझना एक बड़ी चुनौती हो जाती है। बाल उलझते हैं, बालों का झड़ना, टूटना, चमक और वॉल्यूम में कमी हो जाना, अत्यधिक तेल और चिपचिपी सिर खोपड़ी हो जाना, ये सब एक बड़ी समस्याओं का कारण हो जाता है। ऐसे में हमारे सामने जी हाँ प्रश्न उठता है कि अब अपना हेयर स्टाइल हम कैसा बनाएं। तो दोस्तों इसी के अंतर्गत आज हम आपको छोटे छोटे टिप्स दे देते हैं। जी हाँ, अपना लुक भी अच्छा बना रहे और हमारे जो बाल हैं भीग गए हैं या फिर ख़राब हो गए हैं तो उनमें देखने में वो बुरे ना लगें, इसके लिए बालों को उलझने, बिखरने, बेकाबू होने से बचाने के लिए सबसे आसान और सदाबहार हेयर स्टाइल में से एक है चोटी करना। बिल्कुल सबसे अच्छी बात ये है कि ये सरल है हेयर स्टाइल। कैजुअल आउटिंग, सेमी फॉर्मल आउटफिट और पारंपरिक पोशाकों के साथ चोटी हमारी खूब जचती है। ये हमारी पारंपरिक हेयर स्टाइल है। इसके अलावा ऊंची पोनीटेल करना, अगर कोई हेयर स्टाइल एक और है वो गलत नहीं हो सकता, तो वो है हाई पोनीटेल। ये एक बेहद आसान हेयर स्टाइल है और कभी भी किसी भी फैशन के साथ जाता है। आप इस हेयर स्टाइल के बीच में मस्ती भरे दिनों के लिए, दोस्तों के साथ घूमने के लिए और अपने काम निपटाने के लिए जब आप बाहर जाते हैं तो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं। इसके अलावा है मैसी बन, यानी मॉनसून के मौसम में जब आप जल्दी में हो और अपने बालों को संभालना चाहें तो मैसी टॉप नॉट हेयर स्टाइल बहुत काम आती है। मैसी बन को परफेक्ट बनाने के लिए बालों को स्टाइल से पहले उसमें सेरम लगाना ना भूलें। इसके अलावा है साइड ब्रेड, आम धारणा के विपरीत साइड ब्रेड

सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होती। साइड ब्रेड्स हमारे बालों को घर्षण से बचाती है और उलझने और रूखेपन से रोकती है, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। छोटी छोटी टिप्स, बस इनको यूज़ करिए, इनको बनाने की कोशिश करिए और आप टिप टिप बरसते पानी में ऐसे हेयर स्टाइल का भी एंजॉय कर सकते हैं।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नॉन स्टॉप गपशप और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त सविता। दोस्तों कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ अभी हमारे एक दोस्त जुड़े लेकिन वो किसी कारण से उनकी फ़ोन लाइन कट गई। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं, आज के दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय ध्वज दिवस। जी हाँ, प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय ध्वज दिवस। 1947 में इसी तिथि को संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को औपचारिक रूप से स्वीकृत किया गया था। भारत का राष्ट्रीय ध्वज एक आयताकार तिरंगा ध्वज है और इसमें 3 क्षैतिज रंगीन पट्टियां होती हैं जो ऊपर से नीचे इस प्रकार होती हैं। केसरिया रंग जो कि ऊपरी पट्टी होती है, ये साहस, बलिदान और त्याग का प्रतीक है। सफ़ेद रंग मध्य पट्टी, यह शांति, सच्चाई और ईमानदारी का प्रतीक है। हरा रंग निचली पट्टी, ये भारत की उर्वरता, हरियाली और समृद्धि को दर्शाता है। मध्य में सफ़ेद पट्टी पर गहरे नीले रंग से बना हुआ एक 24 तीलियों वाला अशोक चक्र है जो सम्राट अशोक के सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ से लिया गया है। यह चक्र न्याय, धर्म, प्रगति का प्रतीक माना जाता है। ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जिसमें स्वतंत्र भारत के लिए एक राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने की सिफारिश की गई और यह सर्व प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। साथ ही यह ध्वज किसी धर्म या संप्रदाय का नहीं बल्कि समूचे भारत का ध्वज है। तो दोस्तों आज राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है। हम अपने ध्वज को सैल्यूट करते हुए आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

जी हाँ, धीरे धीरे हमारी नॉन स्टॉप गपशप की महफिल अपने मुकाम पर आ पहुंची है और हमारे चलते चलते एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो देखें वो क्या कहते हैं। हेलो हेलो हेलो, तो देखिए हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़े थे लेकिन किन्हीं कारणवश वो फिलहाल नहीं जुड़ पा रहे, तो बस चलते चलते अब अंतिम गीत आपके लिए पेश करने का वक्त आ चुका है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।

0: ये इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: तो दोस्तों, आप फिलहाल आपकी दोस्त सविता को इजाजत दीजिए 107 FM रेनबो पर। आपकी दोस्त ही सविता नॉन स्टॉप गपशप में। और हाँ, जा मैं कहीं नहीं रही, 11:10 पर FM गोल्ड यानी खरा सोना पर हमारी आपकी मुलाकात कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद में होने वाली है। और कल, जी हाँ कल फिर मैं आपसे मिलूंगी। इसलिए चाहते हैं मैं कदे से मीर घर खुदा लाया, ये मैं कह नहीं सकती क्योंकि कल ही खुदा हमें और आपसे रूबरू करवाने वाला है। तो चलते चलते मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और आपका दिन शुभ हो, मंगल में हो, ऐसी ही दुआओं के साथ दीजिए आपकी दोस्त सविता को इजाज़त। फिलहाल तो जाती हूँ मैं।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: ャピアー、あれジャピアー、ジャピアー、あれジャピアー、ジャピアー、トゥリディ、
1: はぁ、はリディ、
0: あしてとらでるほいぎろれ、かこすうぼう、こいれねめなはなさるろ、さあすうたるほろ、あれでけえ、さじごじびこるれ、あれぼきるがんじ、ぼきるがんじやせ、でるみるどる、あしてとらてむれぎろ、
1: はぁ、
0: へだりえせけきこるび、でっ、すうらちょれやっち、あすうらっぷりやはてや、やせ、だいこうどらち、ぼんしゃてどぱるほいやべ、ちょうちょうちょう、
1: とらたるじゃ、
0: あれ、あれ、きやちいたるびと。
1: कापड़ा, थाली और दो तीन ठो गिलास।
0: है इतो तू लिए जाबी।
1: हाँ।
0: अच्छा, ठीक है, चल चल।
1: हो राम जी, हो किशन जी, और बापेर मौका नहीं लौटते ना हो राम जी।
0: अरे ताड़ी है रोईली क्यों? देर ना ही करना, चल चल।
1: नहीं नहीं, चलो। का?
0: कुछ नहीं, चल चल। ए औरत।
1: हाँ।
0: तू हर साथ दो चार को बात साफ साफ हो जा।
1: हाँ।
0: हमार बेटे एक के बारे दस गो जानवरेर खीरे हाँ। अरे सुना है हमीन का बात?
1: हाँ हाँ सुना।
0: देख भोकिल गंजे हमीन एक ठेकेदार का पास माटी काटर काम करे। वो लोग तो पैसा वैसा अच्छा ही दे, लेकिन लेकिन हमार कमाई ते तो सिर्फ हमार पेटो ही चले रे। सूरत पुरिया हटिया गिए तुके एक ठो काम किन्तु ढूंढे लीते ही होवे। हाँ
1: से हमीन जाने।
0: तबा
1: तब का
0: तुरे काम तो हो गिले ना।
1: हाँ?
0: एक तो शादीर मतो शादी आमीन कर बे।
1: हाँ?
0: सबाई के एकदम तज्जब बानिए देवे। लेकिन लेकिन तुर ये सब कपड़ा वपड़ा चोल बे ना ना ना ना, ना। सूरतपुरी हाटी आएगी दुकान से ऐसा जगमग जगमग कमीन साड़ी की नहीं दीवे ना। सब लोगों का आगे के और धान दिया जावे। हाँ? हाँ, बिलायती पाउडर, सिंदूर और खुशबूदार तेल भी किने दीवे। अरे और की किने दीवे जानी?
1: काका
0: चांदी का बिछुआ, गर्डन फूल, पोईडी और गजरोईडी भी किने दीवे।
1: हमार तो ये सब आछे गो। अबर नूतन करे?
0: अरे अरे तू हमार घरे नया जाचिस ना, तो हमार तुके किछु दिते इच्छा करे कि ना बोल? अरे बोल ना।
1: हाँ।
0: तुके ना एक बारे दुल्हनिया बानिए घरे लिए जाबो, बिल्कुल परी जैसी।
2: मन पत्थल झारखंडेर छोट्ट नदी कोयलेर पाशे गड़े उठा आदिवासीदेर ग्राम मन पत्थल। मानुषगुलो बड़ गरीब, एरा केउ गंजू, केउ धोबिया, केउ बा दुसाद। एदेर पेटे खावार नेई, चाष करा जमी नेई, चोखेर आगुने झलसे जावा शरीर, एई नियेई ओरा बेचे थाके, बेचे जाए जतदिन ना मृत्यु ओदेर काछे डाके। एई मानुषगुलो आर तादेर मध्ये बेचे थाका एक नारी चापिया, এদের নিয়েই আমাদের গল্প। শুনতে যাই চলুন মন পত্থল।
3: আলু লেলো, আলু আলু 10 রুপে কিলো, আলু আলু আলু লেলো, আলু 10 রুপে কিলো,
4: আরে 110 110, আরে এক দাম লেলো বাবু, আরে এ বাবু ইদার আও এ লেলো, দেখো গরমি গরমি কে লেলে
0: হে চাপিয়া চাপিয়া দা ইদার ইদার এ ছোকরা হড়না এ চাচাপিয়া ইদার তুই ইদার ঠেল যা।
1: আর তুমি?
0: আমিন আর বসবে না, হ্যাঁ দোকান সে চায় পানি খেয়ে আসি। আরে আরে ডার মত, আমি নেকা খাবে না, তোহার জন্য বিলি আসবে।
1: হো রামজি, হো কিষানজি, আপনার কৃপা।
0: আলো লেলো আন্দাল আলো আলো।
3: আরে কে রে, আরে চাপিয়া না?
5: হ্যাঁ কারে চাপিয়া, নয়া মরদ মিলল হো।
6: কালি কালি
5: মহাগড়িয়া হলি রে চাপিয়া,
6: কালি কালি মহাকালি, কে জয় তারা জয় তারা, কে চাপিয়া না? দেখিস দূরে সাদিটা বি টুটে না, জয় তারা জয় তারা।
7: কোন কোন রে চাপিয়া?
1: तुम गोईबीनाथ?
7: हाँ हाँ रे, मैं गोईबीनाथ।
1: ये क्या हाल बनाया?
7: कहा करू, 3-4 साल तक भूखे दोस्त धरल, हाँ पर खासी आ शरीर टा चौपाट हो गिलो।
1: डाक्टर दवाई कुछ नहीं किया?
7: पेटे दाना जोटे ना तो डाक्टर दवाई। तू कहा समझ रे चापिया, मैं कोई राजा महाराजा का छो हाँ?
1: तुम तो पूरा बुढ़ा बन गिलो, क्या ताकत था तुम्हारा? दोष्टो बन भाषा से ज्यादा ये क्या हाल हो गया?
7: और तू भी तो बुढ़ी हो गई ना चपिया, तेरा जेल्ला भी चल गया, कैसे हुआ ये सब?
1: हमार भी बुखार हुलो एक साल पहले, हाल भी तो ऐसा ही बुरा हो गेलो।
7: तू और हमी दोनों ही बुखारे बुखारे कमजोरी हो गेलो रे चपिया, खेतीर काम मिलबे कि ना के जाने।
1: ओ राम जी को कृपा होने से।
0: हे चपिया, हे चपिया, चपिया, ए ले ले ले, ए रोटी ए चाय एकदम गर्म गर्म है, खा ले, ठीक है? हम इन फिर हाथी आ जाच्छे
1: काय।
0: अरे बाकी धुरे आस्ते आस्ते तुके बोललाम ना, तोर जन्य एक ठो नया झकमक झकमक साड़ी किने दिबे। अरे हमार बात मर्द का जवाना चाह, तू ठहर अभी आते आते आते।
1: चाय रोटी, चाय रोटी खाबे?
7: हाँ ना नहीं, तू खा ले,
1: थोड़ा भाग लो, सुबह से ही तो भूखा है।
7: हाँ रे चापिया, मैं सुबह से ही भूखा हूँ, लेकिन आज नहीं कल सुबह से।
1: कोई भी नाथ
7: का करूं, कोई काम नहीं मिलता, पैसा कैसे मिल बोल।
1: लो ओ, ए, रोटी खा लो। खा लो खा लो तुम।
7: ये रोटी मैं खा लू?
1: हाँ हाँ खा लो तुम
7: रोटी।
1: चाय लो, चाय आस्ते, चाय लो।

0: चापिया
1: हैं?
0: वो आदमी
1: कौन?
0: ये तो के चाय और रोटी दिए गिलो।
1: और नाम नाटवार दुसाद।
0: नाटवार दुसाद? ता नाटवार तुके चाय रोटी खिला चके ने? अरे समझा रे चापिया समझा। का मिले नाटवार तुके शादी करे लिए जावे ना?
1: हाँ।
0: ता कितने बार होलो रे चापिया?
1: हमारा कसूर क्या?
2: चिल्लाते कहे
3: हमारी मुझे ले लो मलिक मलिक मलिक मुझे ले लो
1: मलिक मुझे ले ले मलिक मुझे ले ले
2: अरे छमिया हट हमको छमिया नहीं चाहिए मत चाहिए
3: मुझे ले ले मलिक मुझे ले ले
2: तू अरे कहाँ था शहर चला गया था फिर गांव में लौट आया आजा आजा आजा आजा आजा आजा आजा तू भी आजा अरे अरे मालिक मालिक हट तुझे नहीं चाहिए तू आजा आजा आजा आजा आजा आजा अरे आना बुढ़ा आदमी हो जी रजी रजी चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल
3: चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल दो साल
1: भात नहीं मिला रोटी नहीं मिला अब क्या होवे किसान जी दो साल पहले उनका मालिक भी तो पहले देखे ही काम मिले जे तो लेकिन अब ताकत गया अब क्या होवे किसान जी क्या होवे
3: हम इनको कोई नहीं लिया और काम नहीं मिलेगा तो तेरा शादी भी नहीं होगा ना रे चपिया
1: नहीं
4: चपिया हे चपिया चपिया है कोई काम मिल लो
1: नहीं
4: कोई काम नहीं मिला अरे ठीक है मिल जाएगा जरूर मिल जाएगा इस साल तो अच्छा बारिश हो लो और बहुत खेती मालिक किसान ढूंढते इधर ही लो अरे कुछ ना कुछ काम तो जरूर मिल जाएगा
1: ओ भगवान किसान जी को कृपा होने से
4: ए चपिया इधर रख दे
1: साड़ी
4: हाँ नया साड़ी हमीन तो शादी जिनिस सौदा करते ले फिर से हड्डी आ जाच्छे अरे

내야 살이 아 기아 구스보 고이비낫 हमारे जब शादी हुआ मेरे बाप मुझे मुझे एक ठो अच्छा नया साड़ी दिया वो तो बहुत साल पहले तब मेरा उम्र था 18 साल मेरे बाप 10-20 गांव ढूंढकर वो मरद को ले आया मेरे पहला मरद का नाम था मुंगी लाल यो रात मेरे मेरे पहले मर्द के साथ पहले रात यो रात

तू बहुत खूबसूरत अच्छी और तेरे आंखें बनहोरी नाई का माफी का ची। तू बहुत सुंदर रे चापिया। ए चापिया जेरू मुक्तल देखने दो, लाज

0: राम नाम सत्य है, राम नाम
1: सत्य है,
0: राम नाम
1: सत्य है,
0: राम नाम
1: सत्य है,
0: राम नाम
1: सत्य है,
0: राम नाम
1: सत्य है,
0: राम नाम
1: सत्य है,
0: राम नाम
1: सत्य है,
0: राम नाम।

चाबी एक दरवाजे खोला है। साला दूसरा दिन का इज्जत ओ मुंगेलाल को बहुत डर लगता था, इसीलिए ना इतना दिन देर करते हो रो। कई परेशानी नहीं, अब मौका आया है, छोड़ेंगे नहीं। हाँ अरे चाबिया चाबिया देख चाबिया, मैं तेरे को रखनी बनाऊंगी। हाँ तुझे तुझे का चाहिए बोल, का चाहिए तुझे, तू बस बोल दे तो जो चाहेंगे हम वही दूंगा तेरे को। चांदी का बिछुआ चाहिए और चांदी का पैजल, पैजल चाहिए का? अरे दूंगी। अरे वो चांदी का पैजल पहन के तू मेरे साथ गाएगी नचेगी कैसे? ऐसे

0: बाप बाप भैया भैया बाप बाप
1: कौन कौन रे कौन चापिया इतने बुरे ओ मुंगीलाल
0: ओ तो मार गिलो चाचा
1: मुंगीलाल
0: ओ लाला हरामखोर मुझे रखनी बनाने चाहलो
1: तो
0: मैं उसको काटा दाव से और चले आई चाचा
1: बड़ी बुरा काम किया ओ लाला पूरा मौत चुका तो कोई बात नहीं लेकिन लेकिन थोड़ा वो जिंदा रहेगा तो वो तो किस छोड़ में ना
0: तब मैं का करूं चाचा का करूं
1: जब तक तेरे चाचा ये सरपंच धनपद है ना ये दूसरा टोला में तो कोई कुछ कोते पार में ना लेकिन लेकिन माँ तू रहेगी किधर
0: इधर मेरे बापू के पास
1: कहा बोलू तेरे शादी का एक साल बाद तेरा बापू का देहांत हो गिलो
0: कहा बापू नहीं
1: और तेरे भाई भी वो खदान काम लेकर झाड़िया चले गए लो अभी झोपड़ी में
0: चाचा

0: अकेले अकेले होए, उधर भी तो लाला है।
1: लेकिन बेकार नहीं, काम करने से पैसा मिलवे, रोटी भी मिलवे।
0: ठीक है माँ, कुछ दिन तू इधर ठहर जा, तब देखा जावे तो के लिए क्या किया जाए।
2: तेरू पहला शादी खत्म?
1: हाँ खत्म।
2: फिर क्या हुआ?
1: एक साल तो ऐसा ही चला, बाप का झोपड़ी में काम मिला तो रोटी मिला, नहीं तो कोयल का पानी, जंगल का महुआ का गोठा, बस और कुछ नहीं।
2: तब दूसरा शादी क्यों?
1: का करू दूसरा टोला है, हम अकेली और शरीर का जिल्ला बहुत झामेला शुरू हो गेलो। रातों में नींद नहीं आती, अंधार आया तो बाहर से कोई ना कोई झूठ जे तो वो लोग हमको लोभ दिखा तो बोल तो हे चापिया देख तेरे लिए क्या लाया, तेरे लिए लाड्डू आना, बुदिया आना, करण फूल आना, ले। हम चिल्लाता भाग भाग साला चूहा की छुआ, नहीं तो जान से मार डालेगा। लेकिन ऐसे कितने दिन चलेगा, वो बाप का भंगा झोपड़ी, हम अकेली औरत और हमारा पास एक दाव, बस और कुछ नहीं। एक दिन सुबह सुबह हम सरपंच के पास चला। चाचा चाचा।
0: कौन? ओ चापिया माँ, देख माँ तू एक युवती छोकरी है, ऐसे अकेली कैसे थक भी? ओ सब आदमी का अंदर है जानवर, तू तो फाड़ दी मेरे। तू एक काम कर माँ, तुरंत और एक शादी कर ले।
1: नहीं नहीं, मैं मुंगीलाल को भूल जाऊ कैसे?
0: तू तो पूरा सिनेमा का हिरण का माफिक बोलता रे, जीवन बहुत कठिन है।
1: लेकिन हम एक घोड़ी औरत, हम इनको कौन शादी करबे?
0: का ताज्जुब की बात, हमारा अछूतिया का घर में कोई एक घोड़िया को शादी हुई ना, बोल के तो दो घोड़िया चार घोड़िया शादी करके संसार का चला।
1: जाने चाचा, लेकिन हम अकेली लड़की, मेरो बाप नाई भाई नाई, हम इनको खुद बोलबे हम इनको शादी कर लो, शर्म की बात।
0: तू राजी हो तो बोल माँ, मैं तेरे लिए मरद ढूंढे नहीं आसबो।
1: तू जो भालो बुझो कर लो।
0: ठीक है माँ ठीक है।
3: अरे भाई सुना
4: आ?
3: अरे चापिया को शादी के लिए धनपत तो मरद दूर छे।
5: अरे सुना, लेकिन हमारा घर में तो औरत है।
4: नहीं तो
5: चापिया बहुत अच्छा औरत अच्छी, पूरा जंगल का महुआ जैसा, क्या नेशा क्या तमाशा।
4: अरे सन, हमारा वो पैसा रहने से मैं इसको रखनी बना
3: जाना, एक दाव से फाड़ देवे। हाँ
5: चैपिया क्या निशा क्या तमाशा, चैपिया चैपिया।

0: चौपट आओ आओ आओ ए चापिया चापिया माँ
1: चाचा
0: देख देख देख ये चौपड़लाल है पाकी में रिक्शा चलाता इसको ना इसको दो शादी हो चुका पहले बहू मर गया और दूसरा शादी छूट हो गया

0: इसको संसार में कोई नहीं और तुझको भी संसार में कोई नहीं, तू दोनों शादी कर ले, ये चुमावना अच्छा हवे।
1: चाचा
0: हाँ?
1: उसको बोलो वो रिक्शा गाड़ी की और निजेर
2: क्या बोलो धनपत चाचा।
0: हाँ
2: रिक्शा मालिक रोज 4 रुपया किराया दीते है, उसके बाद सब कमाई हमारा छी।
0: का रे चापिया तू राजी?
1: राजी।
2: और एक बात को चाचा,
0: हाँ
2: तुम्हारी लड़की को बोलू वो हम इनका कमाई पर उनका कोई हक थक बेना, शादी के बाद पेट के लिए दाना अपन को कमाते हो, वो हमारे पेट का सवाल हमारा छे, उनका पेट का सवाल उनका छे, राजी होने से ये शादी होगी।
0: लेकिन लेकिन तेरु घर चापिया के पास नया जाएगा, वो औरत कम कैसे जुटाबे?
3: अरे चाचा सी तो हमारे फर्ज छे, पहले तो उनको पूछो।
0: का रे चापिया तू राजी?
1: राजी।
2: तब कल सुबह साफा कपड़ा टपड़ा पोरे थे को हमीन तू के लिए जाबे।
0: किधर?
2: अरे चाचा सूरतपुरिया हटिया है।
0: क्यों?
2: अरे चाचा साल बहुत अच्छा बारिश हो, खेती का मौसम है ना, इधर का 10-20 गांव का खेती मालिक वो तो किसान ढूंढने इधर ही एलो, कोई अच्छा कटिया औरत मिले जाबे तो उसे काम मिले जाबे। अरे काम मिले गले गेहूं मिलबे बजरा मिलबे और पैसा भी बहुत मिलबे, चापिया को कोई खेती मालिक का पसंद आ जाए तो उसे भी साल भर काम मिले जाबे, तब उसको हमारे घर ले जाबे।
0: तेरा मतलब क्या रे? उनको रागनी बहाने चाहता?
2: अरे नहीं नहीं ये बहुत बुरा बात अच्छी, शादी करने के बाद ही हम उसको हमारे घर ले जाबे, लेकिन काम ना मिलबे तो वो सूरतपुरिया हटिया से तुम्हारे लड़की को वापस आस्तबे। हाँ
0: हाँ हाँ हाँ तू को मर्जी। कारे चापिया तू राजी?
1: राजी।

अरे चौपड़लाल तो मौत का छुआ, उनका बात हाथी का दांत, वो हटियाते ही अछूतिया देर बाहमन देके चुमाऊ ना सेरे नया बहू के लिए निजेर घर दुतली गंज चले जाए चौपड़लाल।

0: यही तेरू दूसरा शादी का कहानी।
1: हम इनको पहली बार सुरातपुरी आए हटिया आषार कहानी।
0: वही बार मैं तुको पहले बार देखा।
1: हम इनको दूसरा शादी का उम्र था 4 साल। एक ठो छुआ भी हुआ।
0: छुआ
1: मरा।
0: हो रामचे, हो रामचे।
1: सुबह सुबह हम दोनों बासी रोटी खाता। ओ चूल्हा धोरिए कालुआ बनाकर हम चौपड़लाल को देता। मुझे भी लेता दोपहर का खाना।
0: फिर
1: चौपट रिक्शा लेके पक्की में चला जाता।
0: हाँ?
1: मैं मालिक का खेती पर।
0: उसका बात
1: रातों में घर लड़ता। मैं लिट्टी नहीं रोटी पकाता। चौपट बहुत मजा की बात भी करतो।
0: मजा की बात हा?
1: मुझे सोचता है कि ऐसे ही दिन गुजर जावे। लेकिन
0: लेकिन अरे लेकिन का
1: 4 साल बाद बहुत सूखा होलो। ना कोई बादल ना कोई बारिश। पानी नहीं तो चास भी नहीं। चास नहीं तो मेरा काम भी खत्म।
2: चपिया

0: ए चापिया, ए, ए, ए, ए, आज भी काम पर ना गिला?
1: नहीं।
0: क्यों?
1: काम कोई चास नहीं तो काम भी नहीं,
0: तो खाना भी नहीं।
1: चौपट।
0: देख चापिया, मन से बहुत दुख होच्छे, लेकिन बात तो बोलते ही है।
1: का?
0: तू मन पत्थर लड़ जा।
1: क्यों?
0: देख, तेरू कमाई बंद और हमार कमाई भी बहुत कम। वो आदमी हाथे पैसा ना थकलो तो कौन रिक्शा चोर पे बोल? अपुन का कमाई से अपुन का ही ठीक से चलता नहीं, दोनों एक साथ रहेगा तो भूखा ही मर जाबी।
1: तू फिकिर मत कर, तू को कमाई से हम हाथ ना दीबो, खाना ना मिलबे तो भूखा मर जाबो, लेकिन चोले जेते मत बोल।
0: क्यों?
1: वो भांगा झोपड़ी में बहुत डर लगे रे।
0: अरे तू आर डर लगे तो मैं का करूं?
1: तू मेरी मरद आछे ना, हम इनको बचानो तेरे धर्म है।
0: अबे छोड़, पहले पेट फिर धर्म। सुन, आज से ही काम पर जा, नहीं तो
1: नहीं तो
0: नहीं तो कोई औरत को हाथ उठाना मेरा ना पसंद।
1: चुप।
2: तो अब क्या हुआ?
1: हमारो दूसरा शादी भी खत्म।
2: और एक बार यही सूरत पुरान हटिया यही काम के लिए लड़ाई।
1: हाय।
2: तीसरा मर्द का नाम की छिलो?
1: जगन, जगन दुसात।
2: जगन दुसात।
1: चौपट लाल के साथ काटी होने की बात हमें ठीक को लेके और शादी कर बिना, कोई काम मिल जाएगा तो अच्छा, नहीं तो एक ही तो पेट कोई ना कोई फिकिर से चला जावे।
2: तो तीसरा शादी क्यों?
1: एक साल बाद अबर बहुत बारिश होलो, सुनलो कि खेती मालिक सब सूरत पुरिया हटिया से कामिन ढूंढने के लिए। हमीन ठीक करलो कि और एक बार मैं खुद अकेली हटिया जाबे। वही दिन दोपहर का बाद जगन हमारा झोपड़ी का पास एलो।
3: चापिया, ए चापिया।
1: कौन रे?
3: अरे हमिल हथियारा जगन दुसात। सुना है तू आर घर में मरद लाई, चौपट लाल की सब तुआरे कट्टी होए किलो।
1: ठीक सुना।
3: देख चापिया, हमारे घर में भी जनाना नाई, तुआर मन होले तू चले आए, मगर
1: मगर मगर का?
3: मगर तेरू दाना तेरे कोई कमत होबे।
1: वो तो हमें जाने रे जगन, शरीरे ताकत थकबे तो काम भी मिले जावे, काम मिले खाना भी जुटे जावे, लेकिन वो भांगा झोपड़ी में बहुत डर लगे रे। तू मुके बांचाते पार भी ना कि बोल ना।
3: अरे हाँ हाँ, हमें तो ये साथिया ते मालूम है रे, ये देख हमारा ताकत, वो बल्लू संभर सबको हमें संभाल ले बे।
1: हमें तो दो पाय जानवर से डरता, तू उसको हाथ से रुकते पार भी ना कि बोल ना।
3: अरे हाँ हाँ, देख इस साल तो बहुत अच्छा बारिश चलो, और खेती मालिक सब
1: हमीन तेरे साथ सुबह सुबह सूरत पुरिया हटिया जाबे, काम मिले शादी कर भी तो जगन।
3: अरे हाँ हाँ, कल सुबह तू के हमारे घर ले जाबे, ये जवान।

0: नहीं,
1: कुछ काम नहीं मिला?
0: नहीं।
1: अरे ये तो खेती मार ली गेलो, ये तो किसान ढूंढ कर चले गेलो, तो के कोई पसंद कर लो ना?
0: नहीं,
1: कोई काम नहीं मिला। अरे कोई काम नहीं मिला तो शादी तो की करे हो बे। ए, वो साड़ी वापस दे।
0: नहीं,
1: तू किलो साड़ी दिया, वो साड़ी वापस दे।
0: नहीं, नहीं,
1: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, शादी कर, ये काम नहीं मिला, शादी कर, शादी, शादी, शादी कर।
2: रोना मत चपिया, रोना मत, तुरे शादी था भी बर्बाद हुए गिलो, काम तो जुटलो ना, अभी की कर भी? सुरात पुड़ियार हटिया ऐसे शादी ना करे तू पहले बार बापेर घरे लौट चीज ना है
0: तू माफी की कर बे
2: सोचता रे जापिया
0: क्यों तुम्हारा गांव का घर
2: 2 साल पहले वो घर महाजनेर पेटे घुसे गिलो रे जापिया
0: कैसे
2: भारी बीमार होलो और काम जुटलो ना मगर पेट तो चालू रखते हो कर्ज निल और वो कर्ज शोध दीते पारलो ना बाप नन्नार घट चले गिलो चापिया चले गिलो
0: तब तुम रहो किधर
2: इधर उधर हटिया की चाली में पेड़ के नीच में सड़क का बगल में मुके दोष तोड़ अंदर से खून निकालो कोई आदमी फिरे ना रे चापिया मेरे पास कोई आदमी भी नहीं ना
0: तब अभी तुम्हारा जाने का कोई जाएगा नहीं
2: ना
0: हमारा साथ मन पत्थल चले
2: का अरे का बोलती तू है तू दिमाग खराब हो गई लो
0: नहीं हमारा दिमाग ठीक है चलो मेरे साथ
2: नहीं नहीं तू अकेली रहने वाला औरत अरे हम इनको तुआर साथ नीले गांव वाला की बोल बे हुश आ जे तू के उड़ा रेंडी बना बे चपिया
0: हम इन कोई को परवाह ना करे
2: नहीं चपिया नहीं ये ये ये बात ठीक ना आ जे
0: ठीक है मन पत्थल जाने से पहले हो शादी तो चुकी है फिर वो चांदीर पोड़ी बेचकर बाहुमनेर पैसा चुका वो
2: नहीं नहीं ये बात ठीक ना आ जे रे चपिया
0: तुम इन चुप हो जाओ आओ मेरे साथ आओ गोविनाथ आओ
2: नहीं नहीं
0: मेरे हाथ पकड़ो
2: नहीं
0: गोविनाथ तुम भी भूखा मरबे
2: चपिया देख चपिया
0: हम भी भूखा मरबे
2: चपिया
0: क्यों अलग अलग मरबे
2: चपिया
0: एक साथ मरबे
2: नहीं चपिया नहीं
0: मरने की पहले से सांस तक जीने का कोशिश तो करबे
2: नहीं चपिया
0: आओ गोविनाथ आओ मेरे हाथ पकड़ो चापिया 8 घोड़िया होबे चापिया 10 घोड़िया होबे चापिया 100 घोड़िया भी होबे

0: বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরের কাটরা এবং ত্রিকুট পাহাড়ে প্রবল বৃষ্টি ও খারাপ আবহাওয়ার জন্য আজ নিয়ে টানা চার দিন শ্রী মাতা বৈষ্ণদেবী যাত্রা স্থগিত রাখা হয়েছে। তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তার কারণে প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দীঘার ওপর দিয়ে বিস্তৃত সক্রিয় মৌসুমি অক্ষরেখার প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আজও বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আগামী কয়েকদিন বৃষ্টি চলবে বলে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে। এই মুহূর্তের খবর এই পর্যন্ত।
1: परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं विशेष कार्यक्रम परियोजना प्रस्तुति और मैं हूं आपकी अपनी आरजे सुलक्षणा पर्वत लेकर आई हूं ऐसी जानकारी या फिर रोचक बात जो देश के हजारों लोगों की तकदीर को जो है तरक्की और सफलता के रास्ते दिखा देगी। ज्यादा सोचिए नहीं, मैं बताती हूं ना, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन आत्मनिर्भर भारत की नई परिकल्पना विजन है। मधुमक्खी पालन ऐसा व्यवसाय है जिसमें रोजगार, पर्यावरण संतुलन, कृषि उत्पादकता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की संभावनाएं घुली हुई है। दोस्तों, आपको क्या मालूम है, देश में शहद का उत्पादन 1.33 लाख मेट्रिक टन तक पहुंच चुका है। यही नहीं, भारत से शहद का निर्यात भी अब 50 से अधिक देशों में हो रहा है, जिससे 750 करोड़ रुपए से अधिक के विदेशी मुद्रा अर्जित हो रही है। मधुमक्खी पालन की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये बहुत कम निवेश में शुरू हो सकती है। किसी भी उम्र वर्ग, शिक्षा स्तर का व्यक्ति इसे सीखकर अपना काम शुरू कर सकता है। देश के कई हिस्सों में इस व्यवसाय ने बेरोजगार युवाओं, छोटे किसानों, महिलाओं और आदिवासियों को एक स्थायी और सम्मानजनक आय का माध्यम दिया है। झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्यों में अब ये एक मजबूत ग्रामीण उद्यम बनकर उभरा है। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन जैसी योजनाएं भी इस दिशा में मील का पत्थर साबित हुई है। वर्ष 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इसके लिए 500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज घोषित किया गया था। इसे प्रशिक्षण, उपकरण, कॉलोनी वितरण, गुणवत्ता नियंत्रण और विपणन के लिए सुदृढ़ संरचना विकसित की जा रही है। भारत में शहद की मांग लगातार बढ़ रही है, विशेषकर कोविड के बाद, जब लोग प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्राकृतिक विकल्पों की ओर मुड़े। आज भारत वैश्विक शहद बाजार में छठा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। युवा किसानों को इस ओर आकर्षित करने के लिए कृषि विश्वविद्यालय और विज्ञान केंद्रों की ओर से चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। तो आपको भी अब लग रहा है ना कि राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन आपकी जिंदगी में भी मिठास भर सकती है। तो फिर किसी रोज किसी और परियोजना पर ढेर सारी बातें करूंगी, लेकिन थोड़ी ही समय में मैं रुक करूंगी उस कार्यक्रम की ओर जिसका आप बेसब्री से इंतजार करते हैं 3 बजे, और उस कार्यक्रम का नाम है 3 का तड़का।
3: गाने जो लगाए, एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं 3 का तड़का 107 FM रेनबो पर 3 का तड़का 107 FM रेनबो पर

गुड आफ्टरनून, नमस्कार दोस्तों। ऐसा है कि आपने ट्यून कर रखा है सिटी ऑफ जॉय कोलकाता का दी रियल रेडियो, बोले तो 107 एफएम रेनबो, जहां हम और आप कनेक्ट होते हैं हार्ट टू हार्ट, यानी दिल से दिल तक का हमारा कनेक्शन होता है। और ये समय होता है आपके उस कार्यक्रम का जिसका नाम है तीन का तड़का, हैशटैग दिल धड़का। और आप सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ, खैर मकदम करती हूँ, वेलकम करती हूँ इस कार्यक्रम में तीन का तड़का में, जिसे सुलक्षणा अपने अंदाज में कहती है तीन का तड़का, यानी ट्रिपल म्यूजिकल एनर्जी बूस्टर प्रोग्राम। तो क्यों ना शुरुआत करें हम उस गीत के साथ जिसे आप सुनेंगे अरमान मलिक नीति मोहन की आवाज में, फिल्म का नाम बार बार देखो, गीतकार कुमार, संगीतकार जो है वो अरमान मलिक। और बता दूं कि आज जो तड़का है ना, वो सेलिब्रेशन का तड़का मिलाने वाली हूं। और सेलिब्रेशन का नाम सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि किसी का हैप्पी हैप्पी वाला बर्थडे है। तो जी हाँ, बिल्कुल आपने सही समझा है। और ढेर सारी बातें आपसे करूंगी, लेकिन उससे पहले सुनते हैं और सुनाते हैं सौ आसमान।

ऐसा है दोस्तों कि जैसा कि मैंने कहा कि तड़केदार तो होगा ही प्रोग्राम, और ये तड़का मैंने लगाया है सेलिब्रेशन वाला। और सेलिब्रेशन वाला तड़का जब लगता है तो समझ में आ जाता है कि किसी का हैप्पी हैप्पी वाला बर्थडे होगा। अरमान मलिक भारत के एक लोकप्रिय प्लेबैक गायक हैं, सिंगर हैं और संगीतकार हैं। 22 जुलाई यानी आज ही के दिन 1995 में मुंबई में जन्म हुआ था अरमान मलिक का एक संगीतमय परिवार में। वे प्रसिद्ध संगीतकार डब्बू मलिक के बेटे और संगीतकार अनु मलिक के भतीजे हैं, और उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु सहित कई भाषाओं में सुपरहिट गाने गाए हैं। प्रारंभिक जीवन और उनके करियर के बारे में भी ढेर सारी बातें करूंगी, लेकिन बाय द टाइम सुनते हैं ये अगला गीत फिल्म हीरो से अरमान मलिक की आवाज में। गीतकार कुमार, संगीतकार अमाल मलिक।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे

मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन

स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 3:19 और इस वक्त आपने ट्यून कर रखा है सिटी ऑफ जॉय कोलकाता का दी रियल रेडियो और सुन रहे कार्यक्रम 3 का तड़का #टैग दिल धड़का यानी कि ट्रिपल म्यूजिकल एनर्जी बूस्टर प्रोग्राम आपकी अपनी आरजे फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत के संग। और ऐसा है दोस्तों कि आज हम मना रहे हैं अरमान मलिक का बर्थडे और 107 FM रेनबो की पूरी टीम की तरफ से उन्हें बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत वो सफल रहे और एक से बढ़कर एक गाने गाएं जिसे सुनकर हम मंत्रमुग्ध होते रहें। जैसे अभी भी हम उनके गाने सुनते हैं तो वाकई में बड़े कर्णप्रिय गाने हैं। और आपको जैसा कि कहा था कि उनके करियर के बारे में बात करूंगी, उनके अर्ली लाइफ के बारे में बात करूंगी, तो बता दूं कि अरमान मलिक का 22 जुलाई 1995 में मुंबई महाराष्ट्र में जन्म हुआ था। दिग्गज संगीतकार सरदार मलिक के वो पोते हैं और संगीतकार अनु मलिक के भतीजे हैं। संगीत उन्हें विरासत में मिला है और उन्हें बहुत छोटी उम्र से ही गायन सीखना शुरू कर दिया था। टेलीविजन से डेब्यू किया, उन्होंने सारे गा मा पा लिटिल चैंप्स 2006 में हिस्सा लिया था और 8वां स्थान हासिल किया था। बॉलीवुड में उन्होंने डेब्यू किया, उन्होंने 2007 की फिल्म तारे जमीन पर के मशहूर गीत बम बम बोले में एक बाल गायक के रूप में अपनी शुरुआत की। सफलता की बात करूं तो 2014 में उन्होंने फिल्म जय हो की गीत तुमको तो आना ही था से पार्श्व गायन करियर की जो है शुरुआत की। उसके बाद उन्होंने मैं रहूं या ना रहूं, बोल दो ना जरा और सब तेरा जैसे कई ब्लॉकबस्टर गीत गाए हैं। और चलिए अब अगला गीत आपको सुनवाती हूं, सब तेरा, अरमान मलिक और श्रद्धा कपूर की आवाज में।

अरमान मलिक ने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई के जमनाबाई नर्सरी स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने बर्कली कॉलेज ऑफ म्यूजिक बोस्टन अमेरिका से संगीत की डिग्री हासिल की। और उनके प्रमुख अचीवमेंट्स की बात करूं तो अपनी मखमली आवाज के लिए मशहूर अरमान मलिक को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उन्हें फिल्म हीरो के गीत मैं हूं तेरा हीरो के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर का स्टार डस्ट अवार्ड मिला। 2015 में ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड GIMA जिग्मा में 2 पुरस्कार मिले हैं। और क्या ही बताऊं, मतलब उनकी आवाज में जो मखमलीपन है ना, वो मतलब बहुत कम लोगों में होता है। और अब चलते चलते यही कहूंगी कि हाँ, ऐसा है कि 3:30 बजे से आपके लिए है एक विशेष कार्यक्रम NCERT के द्वारा जो है ये प्रायोजित किया जाता है, तो इसे सुनिएगा। और फिलहाल चलते चलते आप सभी को सुनवाना चाहूंगी फिल्म अजर से वो गीत जिसे आप सुनेंगे अदिति सिंह शर्मा और अरमान मलिक की आवाज में, फिल्म अजर से ओए ओए। और इसी के साथ सुलक्षणा को आगे दीजिए, टाटा बाय बाय। 7:02 पर फिर मुलाकात होगी आपसे। लेकर आऊंगी छायालोक सेगमेंट हम साथ साथ।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश। आप सबका स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: झाड़ू जब तक एक सूत्र में बंधी होती है तब तक वह कचरा साफ करती है, लेकिन वही झाड़ू जब बिखर जाती है तो खुद कचरा हो जाती है। इसलिए हमेशा संगठित रहें और बिखर कर कचरा न बने।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद एकता और संगठित रहने का सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। श्रोताओं, हमें पहला संदेश मिला है कोका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का। लिखते हैं,
2: डॉक्टर कामिल बुल के 24 तारीख को सुने, बेल्जियम में जन्मे कैसे भारत को अपना कर्मभूमि बना लिया, रामचरितमानस पर शोध किया और कामिल बुल के से कामिल बुल के बाबा बन गए। बहुत अच्छा लगा इतनी अच्छी जानकारी और प्रस्तुति के लिए। उमंग टीम को बहुत बहुत बधाई।
0: और अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देवी और मास्टर अल कबीर का।
2: भवानीगढ़ संगरूर पंजाब से परमिंदर सिंह रंधावा, लखनपाल रंधावा और सुरेंद्र कौर रंधावा जी का।
0: और गणेशवाड़ी कोल्हापुर महाराष्ट्र से संभाजी सुतार, चेतन सुतार और सारिका सुतार जी का।
2: पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए के अंतर्गत आज की कड़ी। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं भारत के अनूठे मेलों की,
2: ऐसे मेलों की जो प्रयास है समुदायों को उनकी संस्कृति से जोड़ने का। इनके बारे में लोगों को अधिक पता नहीं है, लेकिन वे अपने आप में सचमुच अद्भुत हैं, जीवंत हैं और प्रेरणा देने वाले भी। तो कल हमने चर्चा की थी असम राज्य के जॉनबील मेले की, जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का आज भी प्रचलन है।
0: आज हम चलेंगे एक और सुंदर और मनोरम उत्तर पूर्वी भारत के पर्वतीय राज्य नागालैंड और जानेंगे एक और मेले के बारे में। इसे हॉर्नबिल मेले के नाम से जाना जाता है। तो विमलेश जी, अब चर्चा को आगे बढ़ाइए।
2: जी अजीत जी, श्रोताओं, हॉर्नबिल महोत्सव या मेला नागालैंड का सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक मेला है। इसे त्योहारों का त्योहार यानी फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। अजीत जी, आप जानते हैं कि ये कब मनाया जाता है?
0: जी विमलेश जी, हॉर्नबिल मेला हर साल 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है।
2: जी,
0: ये कोहिमा के पास किसामा हेरिटेज विलेज में आयोजित किया जाता है। लेकिन विमलेश जी, एक स्वाभाविक प्रश्न मेरे मन में आता है और वो ये है कि इस उत्सव या मेले का नाम हॉर्नबिल क्यों पड़ा?
2: अजीत जी, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है आपने।
0: जी,
2: इसका जवाब भी उतना ही सुंदर है। हॉर्नबिल एक पक्षी है जो अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये जबरदस्त उड़ान भर सकता है। इसके पंख इतने शक्तिशाली होते हैं कि जब ये उड़ता है तो उसके पंखों की फू फू जैसी आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है।
0: जी विमलेश जी, पूर्वोत्तर भारत में विशेषकर नागालैंड में इस पक्षी को यानी हॉर्नबिल पक्षी को साहस, सम्मान और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।
2: जी, यही वजह है कि नगा परंपराओं में विशेषकर सर के आभूषणों में हॉर्नबिल पक्षी का प्रतिरूप अवश्य दिखाई देता है। आइए अब जानते हैं कि क्या होता है हॉर्नबिल मेले में।
0: श्रोताओं, इस मेले में रंग बिरंगे पारंपरिक

0: नृत्य देखने को मिलते हैं
1: जी,
0: जिनमें सबसे लोकप्रिय और आकर्षक है युद्ध नृत्य
1: जी।
0: युद्ध नृत्य में पुरुष योद्धा पारंपरिक हथियार लेकर नृत्य करते हैं, तेज ड्रम की ताल, वॉर क्राई और तालबद्ध पैरों की गति के साथ ये नृत्य होता है
1: जी।
0: विमलेश जी, एक बहुत विशेष बात तो हम भूल ही गए थे, ये तो बता दें कि इस मेले के दौरान एक बड़ी खास प्रदर्शनी होती है
1: जी,
0: जिसे मोरुंग कहते हैं
1: जी।
0: ये मोरुंग होता क्या है?
1: अजीत जी, मोरुंग नागालैंड की जनजातियों का युवा आवास हुआ करता था। ये बांस और लकड़ी से बना हुआ बड़ा सामुदायिक भवन होता था
0: जी। प्रत्येक गांव में कम से कम एक मोरुंग अवश्य होता था। वहाँ जनजातीय इतिहास, युद्ध कौशल, वाद्य संगीत और लकड़ी के हस्त कौशल सिखाए जाते थे
1: जी। यहाँ हस्तशिल्प, हैंडलूम यानी हस्तकरघा, स्थानीय व्यंजन इत्यादि प्रचुरता से मिलते हैं।
0: श्रोताओं, ये उत्सव नागालैंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रदर्शन है
1: जी।
0: यहाँ आकर लोग असली नागा जनजातीय जीवन, आतिथ्य और उनकी परंपराओं की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी नागालैंड के बेहद खास मेले हॉर्नबिल उत्सव की
1: जी।
0: कभी नागालैंड जाएं तो इस मेले का आनंद जरूर लें
1: जी।
0: तो अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
1: मोरुंग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मोरुंग किसे कहते हैं? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने उत्तर व संदेश हमें भेज सकते हैं। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओ, हमारा पहला कार्यक्रम है सुंदरिया।
1: कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक प्यारी गाय सुंदरिया की कहानी बताई गई है और उसके माध्यम से बच्चों को संदेश दिया गया है कि पशुओं में भी भावनाएं और संवेदनाएं होती हैं।
2: एक समय की बात है, हरियाणा के एक गांव में एक किसान रहता था। नाम था हीरा सिंह। निर्धनता के कारण बड़ी मुश्किल से उसके परिवार का गुजारा चलता था। उसके पास एक गाय थी, नाम था सुंदरिया। उस गाय के कारण हीरा सिंह से गांव वालों को बड़ी ईर्ष्या होती थी। निर्धनता का ये हाल था कि हीरा सिंह सुंदरिया के लिए चारा भी नहीं जुटा पाता था। वो भी गाय को बहुत प्यार करता था। वो चाहता था कि किसी प्रकार गाय को अच्छा चारा मिल सके, लेकिन तंगी पीछा नहीं छोड़ती थी, इसलिए कई बार उसके मन में एक विचार आया।
3: अब तो सुंदरिया को पालना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। कहां से आएगा उसके लिए चारा? यहां तो परिवार के खाने के लाले पड़े हुए हैं। सोचता हूँ उसे किसी धनी किसान को बेच दूँ, कम से कम अच्छा चारा तो मिलेगा उसे।
2: लेकिन हीरा सिंह अपने बड़े बेटे जवाहर सिंह से डरता था, क्योंकि उसे सुंदरिया गाय से बहुत लगाव था। जवाहर सिंह सुंदरिया को प्यार से मौसी बुलाता था। समय बीतता गया और आखिर परिवार की दरिद्रता समाप्त करने के लिए हीरा सिंह नौकरी की तलाश में दिल्ली आ गया। वहाँ एक सेठ के यहाँ उसे चौकीदार की नौकरी मिल गई। एक दिन सेठ ने कहा,
4: हीरा सिंह, शहर में आजकल दूध की बड़ी किल्लत हो रही है।
3: जी मालिक, ये बात तो है।
4: पता नहीं जो दूध तुम दुकानों से लाते हो वो ठीक भी है या नहीं, बहुत मिलावट चल रही है। तुम तो हरियाणा के हो, सुना है वहां की गायें बड़ी अच्छी और दुधारू होती हैं। एक काम करो, तुम हमारे लिए किसी अच्छी गाय का प्रबंध कर दो।
3: जी मालिक, कोशिश करता हूं। वैसे एक गाय है मेरी निगाह में।
4: अच्छा,
3: ऐसी कि साक्षात कामधेनु। दूध भी 15 शेर से ज्यादा ही उतरता है और उसके 200 रुपए तक लग चुके हैं।
4: भाई, इतनी अच्छी गाय है तो 10 रुपए अधिक हम दे देंगे। ये लो 100 रुपए, बाकी तुम्हारे आने पर मिल जाएंगे।
3: जी मालिक।
2: दरअसल हीरा सिंह के मन में उसकी प्यारी गाय सुंदरिया ही थी। सोचने लगा, यहाँ आएगी तो अच्छा चारा भी मिलेगा और मैं उसकी सेवा भी कर लूंगा। हीरा सिंह उसी दिन गांव चला गया। जैसे तैसे अपने बेटे जवाहर को समझाया और गाय लेकर दिल्ली आ गया। सेठ जी ने गाय को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। ऐसी स्वस्थ सुंदर गाय उन्होंने पहले ना देखी थी। दूसरे दिन सेठ जी ने पास के एक ग्वाले को बुलाया और गाय उसके सुपुर्द कर दी। हीरा सिंह का दिल भरा जा रहा था। उसने सेठ जी से कहा,
5: सेठ जी, गाय की नौकरी पर मुझे ही लगा दीजिए, चाहे पगार कम ही दीजिए।
4: यह नहीं हो सकता हीरा सिंह। भाई, हमें तुम जैसा दूसरा ईमानदार और मेहनती चौकीदार कहां मिलेगा? तुम्हें तो यहीं ड्योढ़ी पर ही रहना होगा।
2: ग्वाले ने सुंदरिया को ले जाने के लिए पूरा जोर लगा दिया, लेकिन गाय टस से मस नहीं हुई। अपनी भोली आंखों से वो हीरा सिंह को ही देख रही थी, मानो कह रही थी, तुम्हें छोड़कर मैं कहां जाऊं। हीरा सिंह ने गाय को थपथपाया, पुचकारा और बोल उठा,
5: मेरी प्यारी सुंदरिया, अब चली जाओ ना, मैं यही तो हूं तुम्हारे पास। तुम चिंता ना करो, अरे मैं तुम्हें देखने आता रहूंगा, मेरी प्यारी सुंदरिया।
2: अनमने मन से सुंदरिया चल दी। लेकिन अगले ही दिन कुछ विचित्र हुआ। सेठ जी ने हीरा सिंह को बुलाया।
4: हीरा सिंह, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? आज गाय का 5 सेर दूध भी नहीं उतरा। तुम तो कहते थे कि 15 सेर से भी ज्यादा दूध मिलेगा।
5: सेठ जी, कल ही तो मैंने पूरा 15 सेर दूध दोहकर आपको दिया था, भला मैं झूठ क्यों बोलने लगा?
4: ये बात तो है, लगता है कुछ गड़बड़ है। चलो कल फिर देखते हैं।
5: जी सेठ जी।
2: लेकिन दूसरे दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। सेठ जी को गुस्सा आ गया, बोले,
4: हीरा सिंह, तुमने सचमुच मुझे धोखा दिया है। गाय को ले जाओ और मेरे पैसे वापस करो।
5: लेकिन मालिक, पैसे तो मैं गांव भेज चुका हूँ और उसमें से काफी मकान की मरम्मत में खर्च हो गए, अब पैसे कहाँ से लौटाऊं?
4: तो ठीक है, पैसा मैं तुम्हारी पगार से काट लूंगा।
2: अब रोज रोज यही शिकायत आने लगी। कभी गाय दूध बहुत कम देती, कभी चारे को मुंह तक नहीं लगाती। हाँ, एक बात जरूर थी, जब हीरा सिंह उसे देखने जाता तो बहुत प्रसन्न हो जाती और चारा भी खा लेती। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हीरा सिंह को निहारती रहती, मानो कह रही हो, मुझे वहां क्यों भेज दिया। एक रात की बात है, हीरा सिंह अपने कमरे में सो रहा था कि तभी
5: सुंदरिया, तुम मेरी प्यारी सुंदरिया।
2: वो अपराधी भाव से उसे देख रही थी, मानो कह रही हो, क्षमा करना, मेरा वहां मन नहीं लगा, इसलिए रस्सी तोड़ कर आई हूं, मुझे तो तुम्हारे संग ही रहना है। उस मूक गाय की आंखों में वेदना थी। हीरा सिंह भाव विभोर हो उठा। वो सुंदरिया के गले से लिपट कर देर तक सिसकता रहा।
5: अब तू कहीं नहीं जाएगी, हम गांव चलेंगे। मैं अपराधी हूं कि मैंने तुम्हें बेच दिया, लेकिन सुंदरिया, वो तो तुम्हारे भले के लिए ही तो था। लेकिन अब हम साथ रहेंगे। हाँ, मैं तुम्हें कभी अपने से अलग नहीं करूंगा। मैं सुबह ही सेठ जी से बात करूंगा।
4: आओ हीरा सिंह, कुछ बात बनी? गाय कैसी?
5: सेठ जी, मैं गाय को आज ही गांव ले जाऊंगा।
4: लेकिन उसके लिए जो

0: पैसे तुमने लिए हैं, उनका क्या होगा?
1: सेठ जी, मैं उसे चुकाने के लिए मुफ्त में आपकी चाकरी करने के लिए तैयार हूं। रुपए जब चुकता हो जाएं, तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं भी छुट्टी कर लूंगा। सुंदरिया का दुख मुझसे नहीं देखा जाता सेठ जी।
2: इतना कहकर उसने गाय की डोर थाम ली और कहा,
1: सेठ जी, गाय को गांव छोड़कर मैं आपकी सेवा में फिर आ जाऊंगा और रुपए वसूल होने तक मैं आपके यहाँ काम करूंगा। नमस्ते।
2: हीरा सिंह ने गाय को पुचकारा, थपथपाया और चलने लगा। सेठ जी का मन भी भर आया था, कहने लगे,
3: हीरा सिंह, इस प्यारी गैया के प्रति तुम्हारा प्रेम देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। अरे, तुमसे यहां मुफ्त में काम करवाकर क्या मुझे पाप नहीं लगेगा? मान लो कि मेरे रुपए भी वसूल हो गए। जाओ हीरा सिंह, जाओ।
1: जी सेठ जी।
3: खुशी से जाओ हीरा सिंह, और हां, सुंदरिया का खूब ख्याल रखना, और जब कभी भी समय मिले आपसे मिलने जरूर आना।
1: धन्यवाद सेठ जी।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुंदरिया। आशा है कि आपको जरूर ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है मेरा प्यारा दोस्त।
5: नमस्कार श्रोताओं, प्रेरक कहानियों की श्रृंखला में आपका स्वागत है।
6: ये कहानी है पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य मेघालय की। लेकिन कहानी सुनने से पहले आइए लेते हैं मेघालय राज्य की थोड़ी जानकारी। मेघालय शब्द दो शब्दों के मेल या संधि से बना है, मेघ और आलय।
5: मेघ यानी बादल और आलय यानी घर, तो मेघालय का अर्थ हुआ बादलों का घर। साथियों, प्राकृतिक सुंदरता में मेघालय का कोई सानी नहीं है।
6: जी हाँ साथियों, यहाँ जब तब अनायास ही उमड़ते बादल, ऊंचे ऊंचे पर्वत, कल कल करती नदियाँ और हरे भरे जंगल पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। गारो, खासी और जयंतिया यहाँ की मुख्य जनजातियाँ हैं।
5: मेघालय की राजधानी है शिलांग। ये कहानी शिलांग की है।
6: यूजीन लगभग 15 वर्ष का एक किशोर है। आज शिलांग शहर के पुराने बाजार में यूजीन चला जा रहा था। उसकी आंखें लगातार दुकानों के साइन बोर्ड्स पर ही टिक रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई खास दुकान खोज रहा हो।
7: यही कहीं तो थी वो दुकान। कहाँ है वो? अब ये तो रही वो फूल वालों की दुकान। उसके बाद हाँ, वो रही।
6: उसे वो दुकान मिल गई थी। साइन बोर्ड पर एक पिल्ले की सुंदर सी तस्वीर थी और उसके नीचे लिखा था, पपीज फॉर सेल।
5: यूजीन को कुत्तों से बहुत लगाव था। उसकी बहुत इच्छा थी कि वो भी एक प्यारा सा कुत्ता पाले जो उसका दोस्त बन सके और उसके साथ खेल सके।
6: बात वास्तव में ये थी कि स्कूल में सहपाठी यूजीन के साथ रहने और खेलने से थोड़ा कतराते थे।
5: कुछ सोचकर वो दुकान में दाखिल हुआ।
7: हाँ, यहां से अंदर चलता हूं। अरे वाह, कितनी सुंदर दुकान है और प्यारे प्यारे पपीज भी हैं। आजा आजा।

0: उसने कई बार अपने घर में कहा था कि वो एक प्यारा सा पिल्ला पालना चाहता है, लेकिन उसकी सुनी नहीं गई थी। किसी पशु को पालना काफी जिम्मेदारी का काम होता है। एक पिल्ले को पालने के लिए यूजीन के माता पिता तैयार नहीं थे।
1: लेकिन अब यूजीन बड़ा हो गया है, अब वो खुद पिल्ले का ध्यान रख सकता है, इसीलिए आखिरकार वो मान ही गए। और आज
0: यूजीन पिल्ला खरीद सकता है अपनी पसंद का। यूजीन सीधा काउंटर पर दुकानदार के पास चला गया और बोला,
2: नमस्ते मैडम।
3: नमस्ते बेटा।
2: मेरा नाम यूजीन है, मैं एक पिल्ला खरीदना चाहता हूँ। क्या आप मुझे उसका दाम बताएंगी?
3: देखो बेटा यूजीन, हमारे पास तो ढेर सारे पपीज हैं, सभी नस्ल के।
2: ओह।
3: लेकिन बेटा ये बताओ, क्या तुम सच में खरीदना चाहते हो?
2: जी बिल्कुल, पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं?
3: बेटा बात यह है कि तुम्हारे साथ कोई बड़ा तो है नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बस देखो और चले जाओ?
2: नहीं,
3: क्योंकि यहाँ बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं, देखने की जिद करते हैं, सारे बिल्ले देखते हैं और अंत में लिए बिना ही चले जाते हैं। इससे हमारा समय बर्बाद होता है ना, तो।
2: नहीं ऐसा नहीं है, मैं उन बच्चों की तरह नहीं हूँ, मैं सच में खरीदूंगा, आप उनके दाम बताइए तो सही।
3: यूजीन देखो बेटा, सबसे कम दाम के हमारे पास लगभग 2,000 रुपए के पिल्ले हैं, फिर 3,000 और ऐसे ही। मेरा मतलब नस्ल के हिसाब से और भी महंगे हैं।
2: अच्छा,
3: क्या तुम इतना पैसा दे पाओगे?
2: ओहो, अभी इस समय तो मेरे पास 1,500 रुपए ही हैं। अब ये तो मैं आपको अभी तुरंत दे सकता हूँ, बाकी पैसे आपको कल दे सकता हूँ। मैं पापा से बात कर चुका हूँ, वो मुझे मेरी पसंद का पिल्ला लेने के लिए कह रहे थे, आप मुझसे कल तक ले लीजिए।
3: बेटा ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना, समझो मेरी बात। वो क्या है कि अगर अभी तुम्हें पपी चाहिए तो तुम्हें पूरा पैसा भी अभी ही चुकाना होगा, समझे ना?
2: ठीक है मैडम, पर आप मुझे पपी दिखाइए तो सही, मैं आपको इसका मूल्य चुका दूंगा आज ही शाम तक। अब आया हूं तो पसंद करके ही जाऊंगा, अभी 1,500 दूंगा और जब बाकी पैसे लाऊंगा तब मैं आपसे पिल्ला ले लूंगा।
3: ठीक है। शेल्बिलिन, शेल्बिलिन, अरे कहाँ हो भाई?
4: हाँ जी बताइए।
3: देखो सारे पपीज ले आओ, ग्राहक कब से खड़े हैं, ध्यान रखा करो।
4: हाँ हाँ अभी लाते हैं, बस एक मिनट।
1: थोड़ी ही देर में सामने एक छोटा सा दरवाजा खुला और 5-6 प्यारे प्यारे पिल्ले कू कू करते हुए सामने आए। वो ऐसे लग रहे थे मानो ऊन के गोले हों। सब के सब बहुत ही प्यारे लग रहे थे।
0: यूजीन ने देखा कि उनमें एक पिल्ला था जो उछल कूद नहीं मचा रहा था। उसके सामने के दोनों पांव तो काम कर रहे थे, लेकिन पीछे के दोनों पांव घिसट रहे थे। वो धीरे धीरे घिसटता हुआ सबसे पीछे पीछे आ रहा था।
3: अरे शेल्बिलिन, तुमसे कितनी बार कहा है इसे मत लाया करो, तुम्हें ये छोटी सी बात समझ नहीं आती क्या? तुम फिर से इस पिल्ले को ले आए, हटाओ इसे।
4: ये तो बहुत शैतान है, पीछे पीछे आ ही जाता है, अभी ले जाता हूँ इसे, चलो शाबाश वापिस चलो।
2: एक मिनट, अब इसे क्या हुआ, ये ऐसे क्यों चल रहा है? आजा आजा इधर आ।
3: ये जन्म से ऐसा ही पैदा हुआ है, सही होता तो इसकी बहुत कीमत होती, अब तो बोझ ही है हमारे लिए।
2: मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, कितनी कीमत होगी इसकी?
3: हैं? अब अच्छा।

0: समझ गई बेटा, समझ गई मुझसे मजाक कर रहे हो ना। अरे ये देखो, ये वाला कितना सुंदर है। महंगा तो है, लेकिन दूर दूर से लोग आते हैं इस वाले पिल्ले को खरीदने के लिए।
1: नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे। वो वाला कितने का है?
0: अरे बेटा, कैसी बातें करते हो, ये बेकार है। अरे बिन पैर का पिल्ला, बहुत से लोग आते हैं इस दुकान में, हम तो इसे छुपाई देते हैं।
1: क्या?
0: वैसे भी ये भला किस काम का, कौन खरीदेगा इसे?
1: मैडम, मैं खरीदूंगा इसे, मैं इसे ही खरीदूंगा।
0: मगर क्यों? तुम्हें पता है ये तुम्हारे साथ खेल नहीं पाएगा। तुम आखिर इसे क्यों खरीदना चाहते हो?
1: मुझे यही चाहिए।
0: देखो बेटा, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम अभी जोश जोश में ऐसा कह रहे हो। शायद इसकी हालत पर तुम्हें दया आ रही होगी, है ना?
1: नहीं।
0: लेकिन सोचो, कुछ ही दिनों में अगर ये बीमार हो गया तो तुम इसे सड़कों पर या कहीं और छोड़ दोगे। और देखो, अगर ऐसा हुआ तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा।
1: जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा इसके साथ। मैं इसके साथ कुछ नहीं होने दूंगा। ये अपने इन्हीं कमजोर पैरों पर चलेगा। चलेगा ना मेरे साथ, बनेगा ना मेरा दोस्त। अल्ले।
0: अच्छा ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो फिर इसे यूं ही ले जाओ।
1: यूं ही?
0: हाँ, अब इसकी भला क्या कीमत?
1: क्या मतलब? अगर इसकी टांगे खराब हैं, तो क्या इसकी कोई कीमत नहीं है?
0: अच्छा अच्छा, समझी। स्वाभिमानी हो, मुफ्त में कुछ नहीं लोगे, अच्छी बात है। तो ऐसा करो, इसके तुम बस 50 रुपए दे दो, खुश?
1: 50 रुपए क्यों? ये तो इसका अपमान हुआ ना। इस नस्ल के दूसरे पिल्लों की जितनी कीमत है, वो ही इसकी भी है। मैं आपको इसके पूरे पैसे दूंगा।
0: पर बेटा ये तो
1: बताइए ना, इसकी नस्ल की कितनी कीमत है?
0: बहुत महंगी है, अब 2000 रुपए। मेरा मतलब है कि
1: तो यही इसकी कीमत भी है। अब ये रहे 1500 रुपए।
0: अब
1: और अब ये मेरा हुआ, मेरा दोस्त है ना, है ना मेरा दोस्त, तू यूजीन का दोस्त। तुम्हें शाम तक ले जाऊंगा दोस्त।
0: देखो बेटा, मैं तुम्हारी भावनाओं और जानवरों के लिए तुम्हारे इस प्यार का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन बेटा क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर तुमने इस पपी में ऐसा क्या देखा कि तुमने इसको ही चुना, वो भी इतनी कीमत देकर? आखिर क्यों बेटा?
1: आप पूछते हैं क्यों? ये देखिए मैडम, ये देखिए।
2: यूजीन नीचे झुका और उसने धीरे धीरे अपनी पैंट ऊपर उठाई। दुकानदार ने देखा यूजीन का बायां पांव घुटने से कटा हुआ था, नीचे का आधा पैर कृत्रिम था, वहां धातु का पांव लगा हुआ था जिसके सहारे वो थोड़ा मुश्किल से लेकिन बिना सहारे के चल सकता था।
0: अरे बेटा, ये तुम्हारा?
1: जी मैडम, आधा पैर नहीं है मेरा। अब बताएं मेरी क्या कीमत है आप जैसे लोगों के बीच? मैं भी इस पपी की तरह कूद नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, तो हो गया ना मैं भी बेकार बोझ।
0: अरे नहीं बेटा, कैसी बातें करते हो, वो तो मैं
1: भी मौका मिलते ही सबसे खुलना मिलना चाहता हूँ, लेकिन शायद मेरी ये कटी टांग ने मुझे सबके बराबर नहीं होने दिया। और 5 साल की उम्र से जानता हूँ मेरे साथ कोई नहीं खेलता, ये सब मैं जानता हूँ, ये सब मुझे पता है
0: बेटा।
1: इसलिए मुझे लगता है कि ये पपी मुझे मेरी कटी टांग से नहीं।

0: पहचाने का, मुझे मेरी दोस्ती और मेरे प्यार से पहचाने का। मैं नहीं चाहता ये अभी से मेरी तरह आजादी को, प्यार को तरसे। आज से, अभी से ये मेरा हुआ। आजा मेरा दोस्त, आजा।
1: यूजीन बेटा, इस पपी को तुमसे बेहतर भला कौन समझेगा? और शायद ये किसी और के साथ उतना प्यार भी ना पा सके जो इसका अधिकार है। इसे तुम्हें सौंपकर मैं भी निश्चिंत रहूंगी। ये लो, ये अब तुम्हारा हुआ। लो,
0: आजा।
2: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम मेरा प्यारा दोस्त, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: सिटी ऑफ जॉय कोलकाता और उस कोलकाता के द रियल रेडियो 107 एफएम रेनबो पर ढेर सारा प्यार और अपनेपन के साथ आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती है आपकी अपनी आरजे फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत, आपके ही पसंदीदा म्यूजिकल एनर्जी बूस्ट प्रोग्राम छायालोक। और बुधवार की शाम आपके लिए रहता है छायालोक कार्यक्रम में सेगमेंट हम साथ साथ। तो सेगमेंट तो हम साथ साथ है ही, लेकिन क्या है ना कि हम और आप भी तो जुड़ते हैं दिल से दिल तक। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम साथ साथ में हम किसी न किसी जोड़ी पर बात करते हैं, तो आज हम बात करेंगे अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की जोड़ी पर। अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित ने मिलकर 80 और 90 के दशक में बॉलीवुड में ऑन स्क्रीन मैजिक का मतलब ही बदल दिया। उनकी जोड़ी केमिस्ट्री, चार्म और मास अपील के लिए क्या बताऊं, मतलब लोग पागल हो जाते थे उनको सिल्वर स्क्रीन पर देखने के लिए, और बेंच मार्क बन गए वो सिल्वर स्क्रीन के। और ऐसा है दोस्तों कि बातें तो ढेर सारी करेंगे, लेकिन क्यों ना पहले मिलने जुलने की बात हो जाए। तो फिल्म परिंदा से आपको सुनवाती हूँ सुरेश वाडकर और आशा भोसले की आवाज़ में उस गीत को जिसे बड़ी खूबसूरती से कलमबद्ध किया है खुर्शीद हल्लौरी ने और संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन ने। तुमसे मिलकर

ऐसा है दोस्तों कि इस गाने में जुदाई का शब्द भी आया था, तो आपको बता दूं कि मतलब मैं रहूंगी 8 बजे तक रहूंगी, ऐसा ना सोचे कि पहले गाने में ही जुदाई की बात है तो मैं अब जाने वाली हूं अभी, लेकिन ऐसा नहीं है, 8 बजे तक रहूंगी। और वैसे भी आपको बता दूं कि म्यूजिकली योर्स जो है ना वो प्रख्यात है, पॉपुलर है फॉर वन थिंग, दैट इज कि हम और आप कनेक्ट होते हैं दिल से दिल तक, और जब दिल से दिल तक कनेक्ट होते हैं ना तो जुदाई जो है ना वो उसके बाद हम सोचते ही नहीं है। वैसे फिलहाल हम साथ साथ में हम बात कर रहे हैं आज उस जोड़ी पर, यानी कि माधुरी और अनिल कपूर पर। तेजाब राम लखन बेटा पुकार जैसी फिल्मों में एक जोड़ी के तौर पर उनकी वर्सटाइल टैलेंट को दिखाया, जिससे साबित हुआ कि वे हर जोनर पर राज कर सकते हैं, चाहे वो रोमांस हो, कॉमेडी हो, ड्रामा हो या इंटेंस स्टोरी टेलिंग हो। तो आप जब तक डिसाइड करें कि अगला गाना कौन सा होगा, मैं ही बता देती हूँ। तेजाब से आप सुनेंगे अलका याग्निक और साथियों की आवाज में उस खूबसूरत से गीत को, जिसे कलमबद्ध किया है जावेद अख्तर और संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। वैसे मैं बता दूं कि इस गाने को सुनकर आप चुप तो नहीं रह सकते, गुनगुनाएंगे जरूर, और कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो डांस करना शुरू कर देंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है।

0: इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
1: कैसे?

ऐसा है दोस्तों कि इस गीत को सुनते सुनते मुझे याद आया कि ये गाना अलका याग्निक को जब कहा गया था कि आपको ये गाना गाना है 1 2 3 फिल्म तेजाब के लिए, तो उन्होंने पूछा था कि ये किस हीरोइन के लिए मैं गा रही हूँ, तो उन्हें बताया गया कि माधुरी दीक्षित के लिए आप ये गाना गाएंगी। तो उन्होंने देखा कि वो तो मतलब उनके जहन में यही था कि दुबली पतली सी लड़की है, और जब भी माधुरी सेट पर आती थी तो बहुत ही शांत रहती थी, कोई वैसा मतलब देख के लगेगा बहुत सिंपल सी हैं। तो उन्हें लगा कि एक तो लड़की नई है और फिर ये गाना जो है इसमें बहुत एनर्जी चाहिए, और मतलब ऐसा है कि इस गाने को जो है देखते हुए उनको लगा, लिरिक्स को देखते हुए, कि शायद ये मैचअप ना कर पाए इस गाने के साथ। ये तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था, लेकिन जब ये पर्दे पर आया और देखा गया तो ब्लॉकबस्टर साबित हुआ ये गाना, और तब वाकई में यकीन हो गया अलका याग्निक जी को कि हाँ माधुरी में दम है। और फिलहाल अगला गाना आपको सुनाना चाहूंगी फिल्म राम लखन से, लेकिन उससे पहले बता दूं कि सुभाष घई द्वारा निर्देशित ये फिल्म जो है रिलीज हुई थी इन द ईयर 1989। ब्लॉकबस्टर फिल्म राम लखन की जो मुख्य यूएसपी थी उसके बारे में कैसे ना बताऊं, ये दो विपरीत स्वभाव वाले भाइयों की जो है उनके रिश्ता, अनिल कपूर और आइकॉनिक 1 2 का 4 डांस, शानदार म्यूजिक, माय नेम इज लखन और एंग्री यंग मैन व पुलिस ड्रामा का बेहतरीन मिश्रण थी ये फिल्म राम लखन। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित इस गाने को जो है मतलब फिल्म की जो बहुत बड़ी ताकत बनी ये माय नेम इज लखन, जिसमें अनिल कपूर का सिग्नेचर स्टेप भी देखने को मिला है, और माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की जोड़ी क्या बताऊं, माधुरी दीक्षित राधा के किरदार में और अनिल कपूर ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने जो दर्शकों का दिल जीत लिया, जिससे फिल्म में एक बेहतरीन रोमांटिक एंगल भी जुड़ गया था। तो चलिए देर ना करते हुए आपको सुनवाती हूँ ये गीत मोहम्मद अजीज, अनुराधा और नितिन मुकेश की आवाज़ में। आनंद बख्शी ने बड़े खूबसूरती से इस गीत को कलमबद्ध किया है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किया है।

साथ साथ स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 7:28 और 8 सेकंड और फिलहाल आप सुन रहे हैं म्यूजिकल एनर्जी बूस्ट प्रोग्राम इवनिंग छायालोक में सेगमेंट हम साथ साथ। और आज हम उस जोड़ी के फिल्माए हुए गाने आपको मतलब सुनवा रहे हैं म्यूजिकल योर्स पर। माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की जोड़ी जो है वो बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन पर जो हम क्या ही बताएं, मतलब जो मैजिक होता है उनको स्क्रीन पर देखने पर ना बस लोग चाहते हैं बस देखते ही रहें। और ऐसा है कि अगला गाना मैं आपको सुनवाऊंगी उस फिल्म से जिस फिल्म में अभिनय करने के बाद माधुरी दीक्षित के नाम में एक और टैग जुड़ गया, मतलब कहते हैं ना कि एक और नाम जुड़ गया, तो वो था धक धक गर्ल। अब इतना तो इशारा काफी है समझने के लिए कि अगला गाना आपको मैं सुनवाऊंगी फिल्म बेटा से। 1992 की ब्लॉकबस्टर फिल्म बेटा ने कुल 5 फिल्म फेयर अवार्ड जीते थे। सोचिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अनिल कपूर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का माधुरी दीक्षित, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का जो है वो पुरस्कार जीती थी अरुणा ईरानी, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का जो पुरस्कार है वो अनुराधा पौडवाल फीमेल में वो जीती थी धक धक करने लगा गीत के लिए, और सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशन कोरियोग्राफी के लिए सरोज खान ने जीता था गाना धक धक करने लगा गीत के लिए। तो फिलहाल आपको क्यों ना मैं सुनवा दूं वही गाना

ऐसा है कि अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित, इनके ब्लॉकबस्टर ट्रेंड रिकॉर्ड ने इन्हें ऑडियंस का फेवरेट बना दिया और आज भी उनके नाम का जिक्र हिंदी सिनेमा के गोल्डन एरा की याद दिलाता है। इस जोड़ी के टाइमलेस गाने, चाहे वो 1 2 3 4 हो या धक धक करने लगा, कल्चरल माइलस्टोन के तौर पर सेलिब्रेट किए जाते हैं। अगला गाना आप सभी के लिए फिल्म किशन कन्हैया से अमित कुमार साथ

15 से 18 फिल्मों में एक साथ काम किया है। माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर ने पहली फिल्म उनकी रिलीज हुई थी इन द ईयर 1987, ये फिल्म थी हिफाजत, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी। तेजाब रिलीज हुई इन द ईयर 1988, राम लखन 1989, परिंदा 1989, बेटा रिलीज हुई थी इन द ईयर 1992, पुकार रिलीज हुई थी इन द ईयर 2000, और लज्जा एक फिल्म आई थी जो रिलीज हुई थी 2001 में, टोटल धमाल 2019 में। और ऐसा है कि मतलब और भी कई फिल्मों में इन्होंने साथ में काम किया, जैसे जीवन एक संघर्ष, प्रतिकार, खेल, राजकुमार, पुकार। तो ऐसा है कि अगला गाना मैं आपके लिए प्ले करना चाहूंगी फिल्म जमाई राजा से। हाँ, जमाई राजा फिल्म का नाम लेते ही याद तो आया ही होगा हेमा मालिनी का, वो जो सास के किरदार में वो जो नजर आई थी वो भला हम कैसे भूल सकते हैं। हाँ, जलवा तो छाया था स्क्रीन पर माधुरी और अनिल कपूर का, लेकिन हेमा मालिनी का भी जो कैरेक्टर था बहुत ही स्ट्रांग था। सो अब अगला गाना प्यार हुआ है मुझे और तुझे, अमित कुमार, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में इस गीत को आप सुनेंगे, जिसे बड़ी खूबसूरती के साथ कलमबद्ध किया है जावेद अख्तर ने और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई

सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे

स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 7:52 और फिलहाल आप सुन रहे कार्यक्रम छायालोक सेगमेंट हम साथ साथ, और हम साथ साथ में आज हम बात कर रहे हैं माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर की जोड़ी पर। अगला गाना इसी सिलसिला में आपको सुनवाती हूं मैं, फिल्म पुकार से सोनू निगम अनुराधा पौडवाल की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी और जावेद अख्तर ने इस गीत को कलमबद्ध किया था, AR रहमान ने संगीतबद्ध किया।

भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे आइकॉनिक जोड़ियों में से एक के रूप में उनकी जो है लेगेसी को और बढ़ाता है। बॉलीवुड के फैंस के लिए अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित हमेशा सुनहरी यादों, एवरग्रीन परफॉर्मेंस और बेमिसाल स्क्रीन प्रेजेंस की निशानी रहेंगे, जो दर्शकों को जो है दशकों तक याद रहेगा और दशकों तक इनकी जोड़ी जो है यूं ही चमकती रहेगी। और फिलहाल समय हो चला है कि मैं एक और गाना आपके लिए प्ले करूं। तो ये अगला गाना जो है इसे हमने लिया है फिल्म टोटल धमाल से, और ऐसा है कि देव नेगी, शुभ्रो गांगुली और अर्पिता चक्रवर्ती की आवाज़ में इस गीत को सुनेंगे। और आपको बता दूं ये मल्टी स्टारर फिल्म थी और 18 साल लगभग 17-18 साल बाद माधुरी और अनिल कपूर एक साथ फिर से नजर आए थे टोटल धमाल में। और ये गाना सुनते सुनते हम रुख करेंगे 8 बजे कर्टन रेजर कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 पर।

ऐसा है दोस्तों कि 8 बजे से आपके लिए रहेगा विशेष कार्यक्रम कर्टन रेजर कॉमनवेल्थ गेम्स 2026। और अब जो है आपसे आज्ञा लेना है मुझे, यानी आपके आरजे फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत को। तो साथ रहिए, बने रहिए, सुनते रहिए 107 FM रेनबो।

और अब एफएम मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट पेपर लीक सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है। दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रखने की घोषणा की है। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज सुविधा जारी रहेगी। लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश भर में 162 वंदे भारत रेल सेवाएं संचालित हो रही हैं। राजस्व खुफिया निदेशालय ने गुजरात के अंकलेश्वर में एक आवासीय परिसर से संचालित मेफेड्रोन के गुप्त संयंत्र का भंडाफोड़ किया। अवैध मादक पदार्थ के निर्माण और तस्करी नेटवर्क में शामिल 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। भारतीय नौसेना ने कर्नाटक के कारवार INS कादम्बा नौसेना बेस पर माही श्रेणी के पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मालवन को बेड़े में शामिल किया। कश्मीर में आज अनंतनाग जिले में लाल चौक इलाके में आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी बलिदान हो गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार आतंकियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान जारी है। ईरान पर अमेरिका के हमले लगातार 11वें दिन भी जारी है। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा के लिए किए जा रहे हैं। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ इलाकों में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और खेलों में चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में भारत के आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: Vani, Akash Vani.
1: Glasgow.
2: The Commonwealth Games.
3: नमस्कार। लंबी अनिश्चितता और आयोजन पर मटराते बादल के बाद आखिरकार वो लम्हा आ गया है जब खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स में अदद एक पदक के लिए अपने शरीर के खून का कतरा कतरा झोंक देंगे और फिर टप टप टपकते पसीने से सींच कर एक मेडल पैदा करेंगे। इस पदक की चमक विजेताओं को जीवन में कभी नहीं भुलाने वाली खुशी देगी। बर्मिंघम से चार साल बाद खेलों का कारवां स्कॉटलैंड के ग्लासगो पहुंचा है। हालांकि इस बार चार साल का ये अंतराल कुछ ज्यादा ही मुश्किलों से भरा रहा है। दरअसल कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य को करनी थी, लेकिन दो साल पहले विक्टोरिया ने लागत बढ़ने और फंड की कमी का तर्क देकर आयोजन से अपना हाथ खींच लिया। इससे कॉमनवेल्थ फेडरेशन मुश्किल में पड़ गया। आयोजन से दो साल पहले नए मेजबान की तलाश का काम आसान नहीं था। काफी प्रयास के बाद आखिरकार ग्लासगो को मेजबानी सौंपी गई, लेकिन यहां भी एक अड़चन आ गई। ग्लासगो ने भी कम बजट की बात कहकर ये शर्त रख दी कि वह सिर्फ उन खेलों का ही आयोजन कर सकता है जिनके लिए वेन्यू उनके पास पहले से ही मौजूद है। ऐसे में खेलों की संख्या में कटौती की गई। बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के 19 खेलों के मुकाबले ग्लासगो में यह संख्या सिर्फ 10 रह गई है। जो खेल स्पर्धाएं ग्लासगो में होने जा रही हैं, उनमें एथलेटिक्स, स्विमिंग, ट्रैक साइकिलिंग, वेट लिफ्टिंग, 3x3 बास्केटबॉल, लॉन बॉल्स, नेटबॉल, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, जूडो और बॉक्सिंग शामिल हैं। दूसरी तरफ जिन 9 खेलों को हटाया गया है उनमें रेसलिंग, बैडमिंटन, हॉकी, स्क्वाश, क्रिकेट, टेबल टेनिस, बीच वॉलीबॉल और रग्बी 7 शामिल हैं। इस फैसले का बड़ा असर भारत की पदक की संभावनाओं पर भी पड़ा है। हम आपको बता दें कि बर्मिंघम में भारत ने बीच वॉलीबॉल और रग्बी 7 को छोड़कर बाकी सभी खेलों में हिस्सा लिया और 61 मेडल्स भी जीते थे। भारतीय दल को बैडमिंटन में 2, क्रिकेट में 1, स्क्वाश में 2, टेबल टेनिस में 7 और रेसलिंग में 12 मेडल मिले थे। ऐसे हालात में पदकों की संख्या का कम होना तय है। अब उन खेलों की बात करें जो इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स का हिस्सा हैं और जहां भारत के लिए पदक की बेहतर संभावना है। भारत को बर्मिंघम में बॉक्सिंग में 7, जूडो में 3, वेटलिफ्टिंग में 10, एथलेटिक्स में 8, लॉन बॉल में 2 और पैरा पावर लिफ्टिंग में 1 मेडल मिला था और कुल 31 मेडल भारत ने जीते थे। इस बार भी पदकों की संख्या इसी के आसपास रहने की उम्मीद है, क्योंकि स्विमिंग, ट्रैक साइकिलिंग, 3x3 बास्केटबॉल, नेटबॉल और आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में हमारी दावेदारी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। इस बार के 125 खिलाड़ियों का भारतीय दल मेडल के लिए अपनी सारी ताकत झोंक देगा। इस दल में 77 पुरुष और 48 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। सबसे बड़ा 32 सदस्यों का दल इस बार एथलेटिक्स में पदक की दावेदारी के साथ उतरेगा। इसके बाद मुक्केबाजी और जूडो में 14-14 और वेटलिफ्टिंग में 12 खिलाड़ियों का दल हिस्सा लेगा। हम आपको ये भी बता दें कि ओलंपिक मेडलिस्ट वेटलिफ्टर मीराबाई चानू और बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन और भारत की संभावनाओं पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय खेल प्राधिकरण साई की प्रतिनिधि और वरिष्ठ खेल पत्रकार हिमिका चौधरी। हिमिका, आपका स्वागत।
4: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: हिमिका, आखिर तमाम हाना के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू होने जा रहा है, लेकिन पिछले आयोजन के मुकाबले इस बार 19 की जगह सिर्फ 10 खेल होंगे। इसका क्या असर इन खेलों के आयोजन पर पड़ सकता है?
4: पिछली बार 61 मेडल्स हमको मिले थे, इस बार उम्मीद है कि एटलीस्ट 32 या 33 मेडल्स, 33 मेडल्स हम लेके आए। जैसा कि सबको पता है अब, और आपने भी इसका जिक्र किया, कि जो हमारे मेन मेडल डिसिप्लिन्स हैं, जैसे बैडमिंटन है, जैसे बॉक्सिंग है, जिसमें हम लोग हमेशा से स्ट्रांग रहे हैं, इस वाले ग्लासगो CWG में नहीं है। तो उम्मीद ये है कि जिसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें तो हम जरूर अच्छा करेंगे, पर हाँ, ओवरऑल एक इम्पैक्ट तो जरूर रहेगा मेडल टैली में।
3: जी, और भारत के खिलाड़ियों के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर हम बात करते हैं तो ये गेम्स न सिर्फ पदक जीतकर मनोबल बढ़ाने के लिए, बल्कि उसी साल होने वाले एशियन गेम्स और एक साल बाद होने वाले ओलंपिक की तैयारियों के लिए भी अच्छा मंच प्रदान करता रहा है। इस बार कुश्ती, शूटिंग, हॉकी, बैडमिंटन, आर्चरी का न होना क्या एशियाई खेलों और ओलंपिक्स में भी भारत की संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है?
4: आपने बिल्कुल सही कहा। तो उस हिसाब से तो जो एथलीट जाते हैं, और ये हम सबको पता है कि सिर्फ प्रैक्टिस करना, ट्रेनिंग करना ही इनफ नहीं होता, एक एथलीट के लिए सबसे जरूरी होता है कंपटीशन। एक क्लासिक एग्जांपल है नीरज चोपड़ा का कि वो जिस एंगल में भाला पहले फेंकते थे, फिर उनको पता चला कि उस एंगल में वो अचीव नहीं कर पा रहे, उनका वो जो 90 जो द ड्रीम मार्क है, तो उन्होंने उस चीज को चेंज किया। तो डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिशन हम कह सकते हैं कि जो खिलाड़ी नहीं जा पा रहे हैं CWG पर एशियन गेम्स में जाएंगे और आगे ओलंपिक में जाएंगे LA में, उनके लिए इट्स डेफिनेटली अ लॉस्ट चांस। और ये जैसा आपने कहा, खिलाड़ी का मनोबल और साथ में खिलाड़ी का एक एक्सपीरियंस रहता है, वो उनको इस बार नहीं मिलेगा। पर मैं साथ में ये भी कहना चाहूंगी कि अभी इंडिया में हम लोग इतने सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं थ्रू आउट द ईयर। आप अगर देखें तो सिर्फ इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में हम जा रहे हैं, सिर्फ ये नहीं, जितने इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स आज की तारीख में हम इंडिया में होस्ट कर रहे हैं, कि आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 2025-26 में हमने 36 हमने कॉम्पिटिशन्स जो है इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स हमने इंडिया में होस्ट किया। अभी 26 पूरा खत्म भी नहीं हुआ है, हम और 11 जो है इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन इंडिया में हम होस्ट करेंगे, अगले साल 19 ऑलरेडी पाइपलाइन में है। ये सारे वर्ल्ड चैंपियनशिप लेवल के कॉम्पिटिशन है, अच्छे स्तर के कॉम्पिटिशन है, तो खिलाड़ियों को कॉम्पिटिशन मिलते रहे हैं, आगे भी मिलेंगे। पर वो जो CWG से एशियन गेम्स जाने का एक जो वो आप कह सकते हैं चार्म होता है, वो डेफिनेटली नहीं मिलेगा, और कुछ कुछ खेलों में ये

0: जरूर रहेगा।
1: हिमिका, जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे खेल हैं जो इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स का हिस्सा नहीं है, जिसमें हम ढेर सारे पदक भी जीतते रहे हैं, लेकिन जो खेल इस बार शामिल किए गए हैं उसके लिए हमारे खिलाड़ियों ने तैयारियां कैसी की हैं, पदक की कितनी बेहतर संभावनाएं आपको दिखाई दे रही हैं?
0: देखिए, हमेशा कोशिश यही होता है, वो चाहे खिलाड़ियों का हो, वो चाहे सरकार का हो, जो एक सपोर्ट सिस्टम, एक इकोसिस्टम स्पोर्ट्स का तैयार किया है, ग्रास रूट से लेके एलीट एथलीट तक सपोर्ट देने का, हमेशा एफर्ट यही रहता है कि कंपटीशन जिस स्तर का भी हो, जैसे कि इस बार ट्रंकेटेड है, पर एफर्ट में कोई कमी नहीं है, ना एथलीट के तरफ से ना सपोर्ट के तरफ से। तो मुझे लगता है कि हम लोग डेफिनेटली पिछले बार के मुकाबले वो हर डिसिप्लिन जिसमें हम इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं कम मेडल तो नहीं लाएंगे, क्योंकि पिछले पूरे CWG साइकिल में, और व्हेन आई से CWG साइकिल, 4 साल का साइकिल होता है, उन 4 सालों में बहुत सारे कॉम्पिटिशन में जब हमारे एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया, मुझे कहते हुए खुशी है कि एटलीस्ट हर एक इन डिसिप्लिन्स में, एथलेटिक्स खास करके, क्योंकि उसमें हम लोगों की संभावनाएं काफी ज्यादा है, हम सब जानते हैं कि सारी नजरें टिकी हुई है नीरज चोपड़ा पे, तो नीरज चोपड़ा तो चलिए मैंने वो एक्सपेक्टेड है, वो होने ही वाला है, पर बाकी भी जैसे आप मुरली श्रीशंकर ले लीजिए, तेजस्विन ले लीजिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं वो लोग। तो पिछले कई महीनों में ये सब इंटरनेशनली ट्रेन कर रहे हैं, इंडिया में तो ट्रेनिंग लेते ही है, साई बेंगलुरु में भी वो ट्रेनिंग लेते हैं, NSNIS पटियाला में भी ट्रेनिंग करते हैं, बट ये नजर में रखते हुए कि वो जो इंटरनेशनल खिलाड़ी है उनके स्तर पे उनके जैसा उनको ट्रेनिंग का मौका मिले, फॉरेन कोचेस का सपोर्ट मिले, तो ऑलरेडी जैसे एथलेटिक्स वाले पोलैंड में है, स्पाला में, साइकिलिंग के बच्चे हैं फ्रांस में, ऑलरेडी वो लोग वहां पे पहुंच चुके हैं, जिम्नास्टिक्स के बच्चे हैं वो ऑलरेडी UK पहुंच चुके हैं और वहीं पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, ऐसे और बाकी डिसिप्लिन्स का भी वही है, 20 से ज्यादा फॉरेन कोचेस इंडियन कोचेस के साथ लगे हुए हैं, इंटरनेशनल जो कोचेस है उनमें से बहुत सारे लोग ऑलरेडी ओलंपिक चैंपियन तैयार कर चुके हैं, बहुत सारे कोचेस खुद ऑलरेडी ओलंपियंस रह चुके हैं, तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो जिस तरह के टेक्निक इंट्रोड्यूस करते हैं उससे हमारे एथलीट्स को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, और सब कुछ मिला के, मतलब वेदर इंटरनेशनल एक्सपोजर हो, फॉरेन कोचेस हो, या हमारे देश में जो साई सेंटर्स और एकेडमीज में वो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, सब मिला के तैयारी एकदम 100% से ज्यादा है, और इसीलिए उम्मीद ये है कि पिछली बार जितना मेडल इन सब डिसिप्लिन्स में हमने जीता था, एटलीस्ट उतना या उससे ज्यादा ही मेडल इस बार हम लेके आएंगे।
1: जैसा कि हमने बताया कि इस बार एथलेटिक्स में भारत का सबसे बड़ा दल भाग लेने जा रहा है। ट्रैक इवेंट में पुरुष वर्ग में पदक की एक बड़ी उम्मीद राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी गुरिंदर वीर सिंह 100 मीटर में हिस्सा लेंगे। हम आपको बता दें कि गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर के बीच 100 मीटर स्प्रिंट में हाल के दिनों में कमाल की प्रतिस्पर्धा रही है। हालांकि गुरिंदर वीर सिंह वर्तमान में 10.09 सेकंड के राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ देश के सबसे तेज धावक हैं। उधर अनिमेश कुजूर ने जर्मनी में 10.14 सेकंड का समय निकालकर विदेशी धरती पर सबसे तेज भारतीय होने का रिकॉर्ड बनाया है। हालांकि ग्लासगो में भारत की तरफ से 100 मीटर दौड़ में भाग लेने का मौका गुरिंदर वीर सिंह को मिलने वाला है। उधर 200 मीटर दौड़ में भारत का प्रतिनिधित्व सबसे तेज 20.32 सेकंड का समय रखने वाले अनिमेश कुजूर करेंगे। विशाल टीके की दावेदारी 400 मीटर दौड़ मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले और रमेश का दावा 400 मीटर मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले में होगी। गुलवीर सिंह 5000 मीटर और 10000 मीटर, तेजस शिर से 110 मीटर हर्डल, यशस पलाक्ष 400 मीटर हर्डल और संतोष कुमार तमिल रासन 400 मीटर हर्डल में भाग लेंगे। ट्रैक विमेन्स कैटेगरी में रशदीप कौर 400 मीटर मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले, नीरू पाठक 400 मीटर मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले, अंसा बाबू 400 मीटर मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले, पारुल चौधरी 3000 मीटर स्टीपल चेज 5000 मीटर, प्रियंका गोस्वामी 10000 मीटर वॉक, रवीना गायकवाड़ 10000 मीटर वॉक में शामिल हैं। उधर फील्ड मेंस कैटेगरी की बात करें तो देव मीणा और कुलदीप कुमार पोल वॉल्ट में सबसे बड़ी उम्मीद होंगे। सर्वेश अनिल कुशारे और आदर्श राम जे हाई जंप, तेजस्विन शंकर हाई जंप, डेकाथलान, मुरली श्रीशंकर और लोकेश सत्यनाथन लॉन्ग जंप, प्रवीण चित्रावेल और सिल्वा प्रभु ट्रिपल जंप, समरदीप सिंह गिल और तजिंदर पाल सिंह तूर शॉटपुट, नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह जैवलिन थ्रो में भारत की बड़ी उम्मीद होंगे। फील्ड वीमेन्स कैटेगरी में पूजा सिंह हाई जंप, मनप्रीत कौर शॉटपुट, सीमा कालीरमन और निधि रानी डिस्कस थ्रो में भारत की चुनौती की अगुवाई करेंगी। वैसे अगर दोहा डायमंड लीग में चौथे नंबर पर रहे नीरज की बात करें तो वो कॉमनवेल्थ गेम्स में अपनी संभावनाओं को लेकर काफी उम्मीद रखते हैं।
2: नहीं, मैं काफी खुश हूँ अपने प्रदर्शन से, क्योंकि मैं इंजरी से आ रहा था और काफी टाइम बाद मैं कंपटीशन खेला, तो मैं काफी खुश हूँ अपनी परफॉर्मेंस से। और ये इस साल का पहला कंपटीशन था और अभी तो पूरा सीजन बाकी है, तो आशा है कि और अच्छी थ्रो देखने को मिलेगी।
1: भारत का सबसे बड़ा दल एथलेटिक्स में ग्लासगो जा रहा है, ऐसे में भारत के लिए पदकों की वास्तविक तौर पर कितनी बेहतर संभावना है?
0: देखिए, एक्सपेक्टेशन पिछली बार से कुछ कम नहीं है। एक्सपेक्टेशन सबसे ज्यादा इस बार एथलेटिक्स से ही है, और जैसा कि आपने कहा कि बड़ी संख्या में कंटिंजेंट जा रही है, पर हम ये भी याद रखें कि एथलेटिक्स में भी सारी डिसिप्लिन्स नहीं है, पर जो डिसिप्लिन्स में भारत स्ट्रांग है, जैसे जैवलिन हो गया, ट्रैक एंड फील्ड, ये सारे हमारे जो जंप्स है, क्योंकि वो सब है इस बार के CWG में, तो एक्सपेक्टेशन यही है कि पिछली बार का जो नंबर था उसको शायद हम कुछ एक या दो मेडल से क्रॉस कर जाए इस बार। एथलेटिक्स के लिए पिछले सीजन में ही, और कुछ लास्ट एक डेढ़ महीने की बात होगी, टोटल 26 नेशनल रिकॉर्ड टूटा है सिर्फ एथलेटिक्स में। तो अभी एथलेटिक्स में हमारा जो प्रदर्शन है वो बहुत ही, ये हम कह सकते हैं कि परहैप्स द बेस्ट इन द लास्ट फ्यू कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स। अभी इस टाइम पे हमारा जिस तरह का बेंच स्ट्रेंथ है, हमारा जिस तरह का प्रेपरेशन है, क्योंकि बेंच स्ट्रेंथ बहुत क्रिटिकल होता है, ये हम सबको पता है। तो इस बार क्योंकि ये यंग एथलीट्स है जो बहुत प्रिपेयर्ड है, बहुत ड्रिवन है, एक भूख है उनमें, एक हंगर है, क्योंकि उनको भी प्रूव करना है बहुत कुछ।
1: एथलेटिक्स के बाद जिस खेल से भारत को सबसे अधिक उम्मीद है उसमें बॉक्सिंग सबसे ऊपर है। इसमें पुरुष वर्ग में 55 किलोग्राम में जादूमणि सिंह, 60 किलोग्राम में सचिन सिवाच, 65 किलोग्राम में आदित्य प्रताप सिंह, 70 किलोग्राम में सुमित कुंडू, 80 किलोग्राम में अंकुश, 90 किलोग्राम में कपिल पोखरिया और 90 से अधिक किलोग्राम भार वर्ग में नरेंद्र बेरवाल की चुनौती होगी। महिला वर्ग के 51 किलोग्राम में साक्षी चौधरी, 54 किलोग्राम में प्रीति पवार, 57 किलोग्राम में जैस्मिन लांबोरिया, 60 किलोग्राम में प्रिया घंगास, 65 किलोग्राम में परवीन हुड्डा, 70 किलोग्राम में अरुंधति चौधरी और 75 किलोग्राम में लवलीना बोरगोहेन की दमदार चुनौती होगी। साक्षी चौधरी इन खेलों में अपनी संभावनाओं के बारे में क्या कह रही हैं, वो सुनते हैं।
3: जी, हम अभी कॉमनवेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे हैं। हम 9 जुलाई को आयरलैंड जाएंगे जहां हमारा मल्टीनेशनल ट्रेनिंग कैंप होगा, वहां से हम डायरेक्ट कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए जाएंगे, तो अभी हमारी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है।
1: पुरुष वर्ग में 60 किलोग्राम में भारत की पदक की बड़ी उम्मीद है सचिन सिवाच।
4: तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया, अपने अपोनेंट्स के सारे उनकी वीडियो देख रहे हैं, गलतियों पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी तैयारी चली हुई है, सभी के गोल्ड लिए आने हैं।
1: बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अजय सिंह को भी बॉक्सर्स से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं।
5: देखिए, 14 इवेंट है टोटल हमारे बॉक्सिंग में और 7 लड़के और 7 लड़कियां, तो हमें लगता है कि जो आज तक का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस हमारा रहा है वो गोल्ड कोस्ट में ऑस्ट्रेलिया में, जब हमारे 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज आए थे, उस चैंपियनशिप में भी मैं मौजूद था और मुझे लगता है कि उससे बेहतर परफॉर्मेंस हमारा इस बार होगा।
1: बॉक्सिंग की बात करें तो सिर्फ राष्ट्रमंडल खेलों में ही नहीं, एशियन गेम्स और ओलंपिक में भी हम इस खेल में पदक जीतते रहे हैं। पुरुष वर्ग में सचिन सिवाच और जादूमणि सिंह जैसे उभरते हुए नाम हैं, वहीं महिला वर्ग में टोक्यो 2020 ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन के साथ साथ प्रीति पवार, जैस्मिन लांबोरिया, प्रिया घंगास जैसे बॉक्सर्स की भी अपने अपने वर्ग में तगड़ी चुनौती होगी। पदक की कितनी उम्मीद कर सकते हैं ऐसे बॉक्सर्स के रहते हुए?
0: देखिए, बॉक्सिंग हमेशा से हमारा एक स्ट्रांग पॉइंट रहा है, चाहे वो महिलाएं हो या पुरुष हो, बॉक्सिंग में हम अच्छा करते आ रहे हैं। इस बार बेंच स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है और ये जो प्रेपरेटरी जो फेज था, इसमें जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में हमारी टीम ने पार्ट लिया, जैसे कि इंडिया एशियन चैंपियनशिप्स में 3rd नंबर पे उन्होंने फिनिश किया और इंटायर वुमेन स्क्वाड ने मेडल्स लेके आए। तो हमारा जो स्ट्रेंथ ऑफ एथलीट्स है वो इस टाइम पे बहुत अच्छा है और आई वुड गो एज फार एज टू से कि महिलाओं का अभी इस बार CWG में मुझे लगता है चांसेस पुरुषों से भी ज्यादा है। तो हम अपने जो नजरें हैं वो महिला बॉक्सर्स पे टिकाए रखें, उनको, उनके गेम्स को देखें और मुझे लगता है कि वाकई में मजा आने वाला है और आगे जाके इनमें से बहुत सारी लड़कियां LA तक तो जरूर खेलेंगी। भी मुझे ये लगता है कि ये सब लंबे टाइम, हालांकि बॉक्सिंग रेसलिंग ये थोड़े इंजरी प्रोन भी होते हैं, पर मुझे लगता है कि ये सब

0: लंबे टाइम के लिए है और खेलेंगे और CWG में अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे।
1: वेटलिफ्टिंग भी ऐसा खेल है जिसमें भारत कुछ पदकों की उम्मीद कर सकता है। इसकी टीम की बात करें तो पुरुष वर्ग में 60 किलोग्राम वर्ग में ऋषिकांत सिंह, 65 किलोग्राम में एम राजा, 79 किलोग्राम में अजय बाबू, 94 किलोग्राम में दिलबाग सिंह और 110 किलो से अधिक भार वर्ग में लवप्रीत सिंह अपनी ताकत दिखाएंगे। महिला वर्ग में पदक की सबसे बड़ी उम्मीद मीराबाई चानू 48 किलोग्राम भार वर्ग में भाग लेंगी। उनके अलावा ज्ञानेश्वरी यादव 53 किलोग्राम, बिंदिया रानी देवी 58 किलोग्राम, हरजिंदर कौर 69 किलोग्राम, संजना 77 किलोग्राम, सेराम निरुपमा देवी 86 किलोग्राम और मार्टिना देवी 86 प्लस किलोग्राम भार वर्ग में भारत की उम्मीदों का केंद्र होंगी। फिट होने के बाद वापस लौट रही मीराबाई चानू पदक को लेकर कितनी आशावान है ये सुनते हैं।
2: बहुत लकी हूँ कि हम पहले ही बनूंगा में आके हम ट्रेनिंग करने का मौका मिला है। हम सबका होप कर रहे हैं कि हम सब मेडल लाए इंडिया के लिए, तो प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रही है।
1: जी हिमिका, कॉमनवेल्थ गेम्स में वेटलिफ्टिंग में भी हमारे अच्छे खासे पदक आते रहे हैं। पदक की सबसे बड़ी उम्मीद मीराबाई चानू फिट होकर वापसी कर रही हैं। इस बार दोनों वर्गों को मिलाकर हम क्या उम्मीद कर सकते?
0: देखिए, मीरा का तो ये है कि उसको मैजिक मीरा कहे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो एक्चुअली एक मैजिशियन है। जब हम मीराबाई को देखते हैं और जैसा उनका कद है और छोटी सी लड़की है मणिपुर से, जैसा कि आपने कहा इंजर्ड थी, पर वो उसने काफी दिनों तक USA में रह के ट्रेनिंग भी किया, रिहैबिलिटेशन भी किया, तो मीरा का तो डेफिनेटली एक मेडल चांस हम कह ही सकते हैं। जैसा आपने कहा कि एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा है, तो वेटलिफ्टिंग में मीरा का चांस हम इक्वली उसी तरह से सोच सकते हैं। भारत को गोल्ड मिलने वाले हैं, उसमें से एक तो मीराबाई चानू के नाम होना ही चाहिए और होगा भी शायद।
1: तो दोस्तों, ये थी भारतीय खेल प्राधिकरण साई की वरिष्ठ खेल पत्रकार और प्रतिनिधि हिमिका चौधरी। आकाशवाणी के स्टूडियो आने के लिए, हमसे बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, और जैसा मैंने कहा, लेट्स चीयर फॉर भारत।
1: जूडो में पिछली बार भारतीय दल ने 3 पदक जीते थे। इस बार न सिर्फ पदकों की संख्या बढ़ने बल्कि पहले गोल्ड मेडल की भी उम्मीद की जा रही है। चुस्ते स्फूर्ति और ताकत के इस खेल में भारत की तरफ से मेंस कैटेगरी में हर्ष सिंह की चुनौती 60 किलोग्राम, रोहित बसीर माजगुल की 66 किलोग्राम, अरुण कुमार की 73 किलोग्राम, हर्ष टोकस की 81 किलोग्राम, करणजीत सिंह मान की 90 किलोग्राम, अवतार सिंह की 100 किलोग्राम और यश घंगास की 100 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में चुनौती है। महिला वर्ग में अस्मिता डे 48 किलोग्राम, श्रद्धा कदाबुल चोपड़े 52 किलोग्राम, यामिनी मौर्य 57 किलोग्राम, उन्नति शर्मा 63 किलोग्राम, इनुन गनबी ताखिल्लाम्बम 70 किलोग्राम, इशरूप नारंग 78 किलोग्राम और तुलिका मान 78 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में अपना अपना दावा पेश करेंगी। पिछली बार सिल्वर मेडल जीतने वाली तुलिका मान ने इस बार गोल्ड के लिए ढेर सारी तैयारी की है। सुनते हैं क्या है उनकी तैयारी।
3: बीइंग एन एथलीट, एलीट एथलीट और ऑलरेडी आई प्लेड द कॉमनवेल्थ 22nd, तो मेरा अभी एम अलग है। मैं उन चीजों को, प्रेशर को नहीं लेके चल रही हूँ। मेरा मेन ये है कि मतलब 22 में जो मेरा सिल्वर आया था उसे मुझे अभी कन्वर्ट करना है गोल्ड में।
1: तैराकी में भारत का प्रदर्शन राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक बहुत अच्छा नहीं रहा है। इतिहास की भी बात करें तो सिर्फ एक ब्रॉन्ज मेडल आया है और वो भी पैरा स्विमिंग के जरिए। फिर भी ग्लासगो में स्विमर्स की अच्छी खासी भागीदारी होगी। भारत ने स्विमिंग में भले ही कोई पदक अब तक न जीता हो, लेकिन तैराक अनीश घोड़ा को इस बार खूब सारी उम्मीदें हैं।
4: तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, ये कॉमनवेल्थ गेम्स बहुत बड़ा इवेंट है, हमारी बहुत हार्डवर्क हो रही है। हम भी चाहते हैं कि वहाँ जाके हमारे देश को प्राउड करें और एक मेडल जीत के वापस आए।
1: आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में भी भारत की दावेदारी है। मेंस कैटेगरी में तपन मोहंती, तपेश्वर नाथ दास, स्वातिश केपी, सत्यजीत मंडल, जबकि विमेंस कैटेगरी में प्रणति नायक, निष्का अग्रवाल, इशिता रेवाले, प्रतिष्ठा सामंता पदक के लिए जोर लगाएंगी। तपन मोहंती जिम्नास्टिक्स में भारत के नेशनल चैंपियन हैं। ट्रैक साइकिलिंग में भी भारत का दावा होगा। रोनाल्डो सिंह लेटोंजाम 1000 मीटर टाइम ट्रायल, डेविड बेकहम एलकाटो चुंगो और जेम्स सिंह किथेल्ला क्रम एलिट किरिन, दिनेश कुमार और रोजित सिंह यांगलेम पुरुष एंड्योरेंस और परस्यूट स्पर्धाएं, जबकि सेंखो हर्षवीर सिंह 4000 मीटर टीम परस्यूट में साइकिलिंग ट्रैक पर होंगे। 3x3 बास्केटबॉल के विमेंस व्हीलचेयर कैटेगरी में भारत की चुनौती होगी, जिसमें रीना, रमेश चंद्र गुप्ता, इरिंगबम रितु चानू, जाधव मीनाक्षी हरिश्चंद्र, रायन्नावर लक्ष्मी रायप्पा शामिल होंगी। लॉन बॉल्स में भी भारतीय खिलाड़ियों की भागीदारी होगी। पिछली बार भी इस खेल में हमें 2 मेडल मिले थे। इस बार मेंस कैटेगरी में सिंगल्स में पुतुल सोनोवाल, डबल्स में नवनीत सिंह और दिनेश कुमार शामिल हैं। विमेंस कैटेगरी में नयन मोनी सैकिया सिंगल्स में, जबकि रूपा रानी तिर्की और पिंकी सिंह की डबल्स में सहभागिता होगी। कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा खिलाड़ियों से भी ढेर सारी उम्मीदें हैं। क्या कुछ हो सकता है पैरा एथलीटों द्वारा, पैरा खिलाड़ियों द्वारा? संपूर्ण रिपोर्ट के साथ हमारे सहयोगी शाहिद आजमी।
5: जब इरादे बुलंद हो तो कोई भी बाधा मंजिल का रास्ता नहीं रोक सकती। भारत के पैरा खिलाड़ी इसी जज्बे के साथ अब ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में देश का गौरव बढ़ाने के लिए तैयार हैं। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया ने कहा कि खिलाड़ियों में इस बार अलग ही जोश है।
6: ग्लासगो जो कॉमनवेल्थ गेम हो रहा है, आज पैरा खिलाड़ियों की सेंड ऑफ सेरेमनी, और मैं हर एथलीट को जानता हूं, अब की बार खिलाड़ियों में एक अलग ही जुनून है। कहीं नहीं कि हम पहले खेलने जाते थे, अब खिलाड़ी मेडल जीतने जा रहे हैं। अब की बार जो परफॉर्मेंस होगी वो एक ऐतिहासिक परफॉर्मेंस होगी। आप देखिए कॉमनवेल्थ में जो पैरा खिलाड़ी विशेष तौर पे, उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहेगी और कम से कम हम 5 से 6 मेडल जीतेंगे।
5: ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का 28 सदस्यीय पैरा दल 5 खेलों में चुनौती पेश करेगा। दल में 11 पैरा एथलीट, 7 पैरा पावर लिफ्टर, 5 पैरा तैराक, 1 पैरा ट्रैक साइक्लिस्ट और 4 महिला व्हीलचेयर बास्केटबॉल खिलाड़ी 3x3 टीम में शामिल हैं। बात पैरा एथलेटिक्स टीम की करें तो इनमें देवेंद्र कुमार, दिलीप महादू, राकेश भाई भट्ट, रमेश सनमुगम, शुभमन जुयाल, मोहम्मद बासिल, सोमन राणा, सागर थायत, श्रेयांश द्विवेदी, शर्मिला और शिल्पा भारती चुनौती की अगुवाई करेंगे। हमने भारतीय पैरा दल में से कुछ खिलाड़ियों से उनकी तैयारियों और संभावनाओं के बारे में बात की। ये है डिस्कस थ्रोअर देवेंद्र कुमार।
7: अभी ये मेरा सेकंड कॉमनवेल्थ गेम है, फुल तैयारी के साथ अभी जा रहे हैं और वहाँ अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अपना पर्सनल बेस्ट देने की कोशिश करेंगे।
5: पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी शॉटपुट खिलाड़ी शर्मिला का कहना है कि पहले से बेहतर होगा इस बार।
8: 2022 में भी कॉमनवेल्थ पार्टिसिपेट किया था और अब भी कर रही हूँ। पीछे से अब बेटर है, अब से आगे बेटर होगा, आगे आगे बेटर होता ही जा रहा है। अच्छी सपोर्ट मिल रही है बीसीआई और साई की, और हमारी सरकार खिलाड़ियों को बहुत ध्यान दे रही है और अच्छी मेहनत करके हम भी पीछे नहीं हटने वाले, देश के लिए मेडल लेके देंगे।
5: तैयारियाँ आपकी कैसी हैं?
8: हमारी बेस्ट तैयारियाँ हैं, हम डेली 6 से 7 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। मेरा सपना है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊं कॉमनवेल्थ में।
5: यह 100 मीटर T47 में दौड़ लगाने वाले मोहम्मद बासिल।
9: इट इज माय फर्स्ट मेजर कॉम्पिटिशन। लास्ट ईयर आई स्टार्टेड द पैरा स्पोर्ट्स, दिस ईयर आई विल फर्स्ट इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। सो हैप्पी, सो एक्साइटेड टू द बिग गेम्स, वेरी वेरी एक्साइटेड एंड कॉन्फिडेंट वी गेट इट मेडल रिप्रेजेंट इन इंडिया।
5: देश के पैरा खिलाड़ी कितने मेडल जीतेंगे, यही सवाल हमने पैरा एथलेटिक कोच सत्यनारायण से किया।
10: पैरा ओलंपिक डेफिनेटली हम लोग 7 मेडल जीतने का उम्मीद कर रहा है। 5 मेडल तो कंफर्म है, 100% है। 2 मेडल नीचे ऊपर हो सकता है। मैं एथलीट होके बोलता हूँ एथलेटिक्स पैरा का बहुत अच्छा करेगा।
5: जो एथलेटिक्स टीम जो आपको दी गई है, जो खिलाड़ी सिलेक्ट हुए उनको देखते हुए क्या लग रहा, कितनी मजबूत है, क्या वहाँ पर संभावना उनसे देखते
10: है? आप लोग को मालूम है अभी ग्लासगो में बहुत ठंड है, फिर भी मेरा एथलीट पूरा प्रिपेयर है, 100% हम अच्छा मेडल लेके आएगा।
5: अब बात करते हैं पैरा पावर लिफ्टिंग खिलाड़ियों की, जिनमें परमजीत कुमार, अशोक, झंडू कुमार, सुधीर, जसप्रीत कौर, कस्तूरी राजमणि और सुमन देवी से पदक की उम्मीदें रहेंगी। संभावनाओं पर पैरा पावर लिफ्टिंग कोच राजेंद्र सिंह रहेलू कहते हैं,
11: कॉमनवेल्थ में अच्छी संभावना है, हमारे सारे खिलाड़ी फिट है। हम कोशिश है हमारी इस बार पावर लिफ्टिंग में अच्छे मेडल आएंगे, और बाकी जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बोला ही है, देवेंद्र जी ने, कि बहुत बड़ा दल जा रहा है इस बार, पहली बार इतना बड़ा दल जा रहा है, तो एक नया रिकॉर्ड बनेगा, इंडिया बनाएगा, मुझे श्योर है कि हम जीत जाएंगे।
5: पैरा तैराकी में रवि वीरा, वेंकट बुडगिना, अली इमाम, सुरेश जाधव, चैतन्य विश्वास कुलकर्णी और स्वातिक पाटिल भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसी तरह पैरा ट्रैक साइकिलिंग में लिशा दास अकेली भारतीय खिलाड़ी होंगी, जबकि महिला व्हीलचेयर बास्केटबॉल 3x3 टीम में रितु चानू, इरिंगबम, रीना, रमेश चंद्र गुप्ता, मीनाक्षी हरिचंद जाधव और लक्ष्मी रायप्पा चुनौती पेश करेंगी। इस अवसर पर रियो पैरालंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट दीपा मलिक से हमने राष्ट्रमंडल खेलों में देश के खिलाड़ियों से संभावनाओं पर बात की।
12: संभावना संभावनाएं बहुत अच्छी हैं इस टीम में. हमारे कॉमनवेल्थ रैंकिंग 1, वर्ल्ड रैंकिंग 1 ऐसे खिलाड़ी भी जा रहे हैं. तैयारियों से ज्यादा खुशी इस बात की है कि नंबर ऑफ स्पोर्ट्स बढ़े हैं. अब 5 विविध स्पोर्ट्स में हमारे पैरा एथलीट जा रहे हैं और लगभग 28 एथलीट जा रहे हैं, इसमें 40% महिलाएं जा रही हैं. मुझे बहुत खुशी है.
5: भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की पैरा स्पर्धाओं में अब तक 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते हैं. इस बार उम्मीद है कि भारतीय पैरा खिलाड़ी इस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे.
1: भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा से विशेष बात की कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के बारे में हमारे सहयोगी शाहिद आजमी ने.
13: आई होप दैट प्लेयर्स डिड प्रिपेयर्ड वेरी वेल एंड इसी साल थोड़ा लिमिटेड इवेंट है हमारा, बट फिर भी

0: इंगेज में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस एनीवे 2 मंथ्स इज देयर दे विल डू बट अभी तो ग्लासगो में भी आई एम एक्सपेक्टिंग गुड परफॉर्मेंस बाय बिकॉज़ द गवर्नमेंट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑल एसोसिएशन इज इन वन लाइन एंड दे आर प्रोवाइडिंग ऑल द फैसिलिटीज व्हिच प्लेयर्स वांट्स सो एक्सपोजर इज द मस्ट दे आर गेटिंग फॉरेन एक्सपोजर एंड ऑल दोस थिंग एंड एसोसिएशन इज वर्किंग ऑन इट एंड लॉट ऑफ स्पॉन्सर्स आल्सो फॉर IOA इज आल्सो गिविंग फुल सपोर्ट टू प्लेयर्स सो दैट आई होप दैट प्लेयर्स अच्छा करेंगे
1: लास्ट क्वेश्चन 2030 में हम होस्ट कर रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम तो यहाँ और कुछ सीखने के लिए होगा देखने के लिए होगा IOA इसके बारे में क्या कहेगा कैसे प्लान कर रहा है
0: आवर टीम इज देयर आवर IOA टीम एंड गवर्नमेंट टीम ऑल टीम इज देयर टू सी व्हाट आर ऑल द थिंग्स दे आर डूइंग हम तो पीछे नहीं है पहले भी बड़ा कॉम्पिटिशन तो इधर ऑर्गेनाइज किया है बट फिर भी व्हाट आर ऑल द चेंजेस वी हैव टू डू ऑल टीम विल बी देयर
2: भारत के खेल मंत्री मनसुख मांडविया को भी दल से ढेर सारे पदक की उम्मीदें हैं।
3: मेरा पक्का विश्वास और भरोसा है कि भारतीय एथलीट अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे बहुत हौसले के साथ खेलेंगे देश का गौरव बढ़ाएंगे और भारत का परचम कॉमनवेल्थ में लहराएंगे दोस्तों मोदी जी ने हमारे एथलीट को अपने परम मित्र कहे जब हमारे एथलीट कॉमनवेल्थ के लिए जा रहे हैं तब दोस्तों मोदी जी की शुभेच्छा आपके साथ है देश के 140 करोड़ की जनता का भरोसा आपके साथ है
2: ग्लासगो में भारत के लिए खेलों से इतर भी बहुत कुछ होने वाला है बता रहे हैं भारत के मिशन प्रमुख दिग्गज टेनिस खिलाड़ी और भारत की डेविस कप टीम के कप्तान रोहित नागपाल
4: के सिंबॉलिकली अगर आप देखा जाए तो हम लोग नेक्स्ट होस्ट है तो खेल के अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज प्लान हो चुकी है वहाँ पे हम लोगों को बैटन लेना है हम लोगों को वहाँ से फ्लैग लेना है कॉमनवेल्थ का हम लोगों को कल्चरल डांस दिखाना है इंडिया का फिर एक ट्रेड कट ग्रुप भी बन रहा है हम लोगों का तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है एक्सचेंजेस जो की हम लोग प्लान कर रहे हैं सारा वहाँ खेल के अलावा भी तो सिम्बॉलिकली अगर देखा जाए ऑलराउंडेडली तो एक बहुत जरूरी ये एक ट्रिप है जिसके अंदर हम लोग जाके ये सब चीजें लेके आएंगे इंडिया के लिए और सारा फिर फोकस शिफ्ट करेगा इंडिया पे कॉमनवेल्थ गेम्स का तो ये काफी सालों बाद एक गेम इंडिया को आएगा अगर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है और यही एक होलिस्टिक पिक्चर है
2: कुछ ही घंटे में पदकों की दौड़ शुरू होने वाली है और एक दूसरे को पीछे छोड़कर आगे निकलने की होड़ मचने वाली है पदकों की इस आपाधापी में किसी का सितारा चमकेगा तो किसी को जीत के लिए नई सीख और जज्बा हासिल होगा तो कल से रोमांच शुरू होने वाला है हम भी आपसे जुड़े रहेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की हर हलचल धड़कन और रोमांच के साथ कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शहनवाज खान और सहयोगी शाहिद आजमी के साथ धर्मेंद्र को भी दीजिए अनुमति नमस्कार
5: The Commonwealth Games.

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक
1: हम साथ साथ। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: उसके 36 मिनट स्टूडियो की घड़ी में वक्त।

मैं सुचिष्मिता आप सबके साथ कार्यक्रम हम साथ साथ बातें होंगी श्रीदेवी अनिल कपूर की जोड़ी की। लवे फिल्म से सुनेंगे कार्यक्रम का पहला गीत और 107 AIR FM रेनबो दिल से दिल तक पसंद रहे हैं आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं साथ रहे हैं।

सच हो गया। अस्सी और 90 के दशक में बड़े पर्दे पर ऐसा जादू बिखेरा था इस जोड़ी ने कि हर कोई इस जोड़ी का फैन था। बातें हो रही हैं श्रीदेवी अनिल कपूर की।

बातें हो रही हैं अनिल कपूर और श्रीदेवी की और असियाना बी के दर्शक में, जैसे कि मैंने बताया कि वो एक बेहतरीन जोड़ी थी और इन्हें साथ में देखने के लिए लोग बेताब रहते थे। इस जोड़ी में रोमांस, कॉमेडी, ड्रामा, शानदार डांस और हर चीज़ जो एक सुपरहिट जोड़ी में होनी चाहिए, सब चीज़ों का जो है संगम था। 1987 में मिस्टर इंडिया ने इस जोड़ी को अमर बना दिया। अनिल कपूर और चुलबुली पत्रकार सीमा यानी श्रीदेवी के फिल्मी में जो नोकझोंक रोमांस और शानदार केमिस्ट्री थी, वो आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है, चाहे फिर वो गीत हवा हवाई हो या कांटे नहीं करते।

बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की

बातें हो रही हैं अनिल कपूर और श्रीदेवी की, तो उनके उनकी बेहतरीन फिल्मों की बात करें तो मिस्टर इंडिया लम्हे, रूप की रानी, छोटों का राजा, हीर राजा, जुदाई, बेटा, सभी फिल्म जो है अपने आप में खूबसूरत हैं, दिलचस्प हैं और यादगार हैं। दिलचस्प बात यह है कि बहुत कम लोग शायद जानते हैं कि अनिल कपूर और श्रीदेवी सिर्फ पर्दे पर ही नहीं बल्कि पारिवारिक तौर पर भी जुड़े हुए हैं। 1996 में श्रीदेवी ने निर्माता बोनी कपूर से शादी कर ली, जो अनिल कपूर के बड़े भाई हैं। इसके बाद दोनों की ऑन स्क्रीन जोड़ी कम दिखी, लेकिन दोस्ती और पारिवारिक रिश्ता कभी कायम खत्म नहीं हुआ। थ्री स्टूडियो की घड़ी में वक्त और वक्त हो गया है कि मैं भी कहूँ अब आप सबसे टाटा एंड बाय बाय। सुनते रहिए, साथ रहिए 107.8 FM रेनबो, दिल से दिल तक। मैं सुचिश्मिता आप सबके साथ, और ज्यादा ज्यादा छोड़ जाऊंगी आपको उन्हीं की फिल्म का एक और गीत। सुनते रहिए, साथ रहिए।

0: आप लोग भी गाइए, पूरा गीत नहीं तो इतना तो गा सकते हैं। जुम
1: जुम
0: गुड। आप ला ला ला
1: ला ला ला
0: वेरी गुड। और आप
1: वेरी वेरी गुड। जुम
0: ला ला ला

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: बुधवार रात सुनो ब्लॉकबस्टर बुधवार 107 FM Rainbow Day।

0: ये आसमान है, जमीन थोड़ी जो तुम लोग जानवरों की तरह लड़ रहे हो। देखो अगर मस्ती करोगे तो मैं तुम्हें भगवान के हवाले कर दूंगा। जैसे अपन नीचे जमीन पर राशन के लिए लाइन लगाते ना, वैसे लाइन लगाओ। शाबाश, राशन राशन जैसे चावल मांगते अपन। कैसी औलाद है हाथ?
1: अरे हाथ जोड़ो रे प्रभु, आज कैलाश में ये कैसी भीड़ है।

0: बोल ना जोरू सबके नाम।
1: प्रभु ये अरे हटो ना बीच में से। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर गोद में और दिसंबर पेट में।
2: अरे तुम्हारे एक परिवार में इतने सारे बच्चे?
3: क्या करूं भगवान क्या करूं, ये सब तो आप ही की देन है, क्या करूं।

0: तेरा मस्ताना पास मेरे ना आना, भूल कोई फिरते ना खिल जाए। हे रूप तेरा मस्ताना पास मेरे ना आना, भूल कोई फिरते ना खिल जाए।
1: क्या हुआ?
2: बार फूल नहीं खिलना चाहिए बार।
1: अच्छा, प्रभु, इस बढ़ती हुई आबादी की मुसीबत से हम लोग कैसे बचें? आप ब्रह्मा जी से कहिए ना, कुछ दिनों के लिए बच्चों की पैदाइश बंद कर दें।
3: ये कैसे हो सकता है भक्त?
1: तो फिर एक काम करिए प्रभु।
3: वो क्या?
1: प्रभु, इससे आबादी भी कम हो जाएगी, बच्चा बजाय 9 महीने के 18 महीने में पैदा हो। क्यों रोती है?
2: 18 महीने? अरे हम औरतों का हाल क्या होगा? ये गोश्त तुम मर्द क्यों नहीं लेते?
1: नको, ये दर्द मेरे को नको। प्रभु, आप ही कुछ बताएंगे।
3: देखो भक्त, ब्रह्मदेव की सृष्टि को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं।
1: क्या?
3: क्योंकि उन्होंने पहले ही मनुष्य को अनंत शक्ति का वरदान दिया है। यदि मनुष्य सोच समझकर अपना जीवन बिताने का प्रयत्न करे तो उसे सुख और शांति अवश्य प्राप्त होगी।
1: प्राप्त? प्रभु, मैं कुछ समझा नहीं।
3: नहीं समझे बालक? अच्छा, अब तुम अभी समझ आओगे। सोहम, ये देखो, इस आदर्श परिवार को देखो।
1: अरे, सिर्फ 2 बच्चे, ये कैसे?
4: ये लीजिए, परिवार नियोजन।
1: परिवार नियोजन? जाओ प्रभु।